नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की 19वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 11 अक्टूबर सन 2026। हम अपनी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर

0: आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। रास्ते कितने भी कठिन हों, हौसले मजबूत हों, तो मंजिल दूर नहीं। ये था आज का चिंतन। और लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं, मीरा भजन लता मंगेशकर की आवाज में।

लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 338। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत

आप सुनेंगे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज भाग 11 प्रसारित होगा। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन, गायक एवं संगीतकार, संवादिका ममता सिंह। सुबह 7 बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, और 8 बजे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 पर और पुनः दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 बजे बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनेंगे आप गौतम कृष्ण चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कामली। सुबह 11 बजे विविधा में आप सुनेंगे सृजन भारती काव्य तरंग, हिंदी पखवाड़े पर विशेष कवि गोष्ठी, प्रतिभागी सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण शर्मा, दमयंती दीपा, संचालन ममता सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दोपहर 12 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और सुरीला सफर दिन में 1 बजे। दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर और 2:30 पर, आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का। दोपहर 3 बजे मन चाहे गीत, संवादक मंजू द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग में आप सुनेंगे प्लास्टिक की घास, इसका भाग 2 आज प्रसारित होगा, लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। दिन में 3:30 पर आप इसे सुन सकेंगे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर पुनः तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित रॉय की गाथा आज आप सुनेंगे, वाचन और स्वर मंजरी वर्मा का है, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, शाम 7 बजे। इंद्रधनुष में आज आप सुनेंगे साज और आवाज, गिटार चरणजीत सिंह, 7:45 पर, और रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी हमारा क्या होगा, लेखक प्रकाश साथी, निर्देशन कमल दत्त का है। आठ 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे पुनः आप सुनेंगे विविधा।

तो ये थी दिन भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोका। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 338।

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर, दूषण, विराट, बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र, पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज देखते हैं कि शेखर दादा क्या सुनवाने वाले हैं। लेकिन हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक नाम याद आ रहा है, शर्मा बंधु, जिनके भजन को हम सुन सुनकर कहीं छाया पाते हैं, धूप से निजात पाते हैं। शेखर दादा बताइए क्या सुनवाएंगे।
2: जैसे कभी कभी अचानक कोई तूफान आ जाता है,
1: हाँ,
2: या अचानक कोई जोरदार से बादल गरजते हैं और कोई बारिश बहुत धमाकेदार आ जाती है, वैसे ही कभी कभी बहुत कड़कती धूप हो और अचानक एक बादल आकर के छा जाए, तो जैसी शीतलता आपको अचानक मिलती है
1: जी।
2: वैसी शीतलता मिली थी 1974 के एक भजन से, जब अचानक बिल्कुल अपरिचित चार भाइयों ने, जिनको हम शर्मा बंधु के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक भक्ति रचना प्रस्तुत की और बाद में उसको फिल्म परिणय के लिए जयदेव जी ने उनकी ही धुन को रिकॉर्ड करके उस गीत को और भी अमरत्व प्रदान किया। तो मैं चाहता हूं कि आज इस कड़ी में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये रचना सुनाएं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी।

0: क्या बात है। परिणय फिल्म की ये रचना जब भी हम सुनते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि कड़ी धूप में छाया मिल गई है। दादा, इन के जो रचना है इसकी कुछ बारीकियां बताइए, और शर्मा बंधु के चारों बंधुओं के नाम और इनके शैली के बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी
1: अब तो
0: दीजिए।
1: खैर उसी परिवार के और भी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन लोगों ने भी इसका ध्वज धारण कर लिया है। तो अब हमारे पास शर्मा बंधु की टीम्स हैं बहुत
0: जी
1: सारी।
0: जी
1: लेकिन जिस समय ये शुरू हुआ था उसकी सबसे विशेष बात ये थी कि बिल्कुल एक जैसा चारों भाई मिलकर
0: जी
1: गाते थे। ये उत्तर भारत में परंपरा नहीं थी, दक्षिण में जो है, दक्षिण के आप 50 सिंगर्स को एक साथ बिठा के गवा देंगे वो बिल्कुल एक जैसा गाएंगे, पर उत्तर भारतीय संगीत परंपरा में एक जैसा गाने वाले दो सिंगर भी आपको नहीं मिलेंगे।
0: जी जी
1: फिल्मी गानों की बात अलग है, पर यहाँ चारों भाई मिलकर गाते थे और बिल्कुल एक साथ मिलकर गाते थे। उनकी सांस लेने की जगह भी तय होती थी ऐसा मैं लगता है, मतलब सुन करके। और वो इतना प्रभावी हुआ उस समय, ने एक जादू कर दिया। और हमारे यहाँ ये अद्भुत बात है कि हर 5, 10, 15 साल में ऐसा कोई ना कोई जादू अचानक कोई जाकर के छिड़क देता है हमारे ऊपर, और उस जादू से हम लोग आनंद में रहते हैं। तो ये रचना शर्मा बंधु जी की, ये लोग उज्जैन के थे मूलतः, मध्य प्रदेश के, तो बहुत अच्छी रचना उन्होंने गाई और बहुत वो उसको प्रसिद्धि मिली।
0: जी अब आगे हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनवाने वाले हैं?
1: मैं ये बताना भी चाह रहा हूं कि अमूमन अधिकांश गायकों ने, गायिकाओं ने अपने प्राइवेट एल्बम्स भी निकाले। दो एक ही हैं जिन्होंने गजलों के एल्बम निकाले होंगे, पर ज्यादातर गायक गायिकाओं ने अपने भजनों के एल्बम्स निकाले। इसमें कई चीजें बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे मुकेश जी की रामायण बड़ी प्रसिद्ध हुई, फिर सुधीर फड़के जी का गीत रामायण मराठी में वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सुंदर उसका सेट बना था। ऐसे ही लता जी के प्राइवेट सॉन्ग्स थे, मीरा या उनकी ज्ञानेश्वरी मराठी में। तो ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ प्राइवेट एल्बम्स की एक परंपरा मिलती है, और उसी परंपरा में एक गायक का एक बहुत ही अद्भुत हमारे ऊपर छाप हमारे मनों में है। जिस गायक ने सबसे कम गाने गाए संख्या के हिसाब से, पर जिन गायक के एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गाने हिट हुए, और उनका नाम था आदरणीय मुकेश जी।
0: जी जी
1: और मुकेश जी ने जब भी गाया तो वो भारतीय जनमानस को हमेशा बहुत भाया।
0: जी
1: मुझे ऐसा लगता है आप भारत के किसी भी शहर किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको वहां मुकेश जी के गाना गाने वाले लोग मिलेंगे ही।
0: जी चाहे दिल टूटा हो किसी का, चाहे किसी से
1: चाहे,
0: दिल जुड़ा
1: हाँ,
0: हो,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: फिल्मी गीत हो, भजन
1: फिल्मी
0: हो,
1: हो,
0: कव्वाली
1: भजन हो, जो भी हो, क्योंकि मुकेश जी सरल गाते थे।
0: जी जी
1: बाकी सब मान लीजिए, मैं मुझे अगर आप कहें कि मन्ना दा का गाना गाना है तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
0: हाँ, जी
1: लता जी का गाना है, आशा जी, इसमें

0: अच्छा
1: हाँ
0: रफी साहब, लेकिन मुकेश जी का गाना तो मैं गा सकता हूँ कभी
1: जी
0: भी। और ऐसा ही एक भजन उनका था जो उनके निधन के बाद रिलीज हुआ 1976 में, अमेरिका में डेट्रॉयट में मुकेश जी का अकस्मात निधन हुआ। उस समय ये भजन रिलीज हुआ था और वो एकदम चुटकी बजाते पूरे देश में इतना प्रसिद्ध हो गया कि हम सब उसको कब से गा रहे हैं हमें भी याद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता इसको सुने। जितना अच्छा मुकेश जी ने गाया है उतनी ही अच्छी इसकी धुन है और उतने ही सुंदर इसके शब्द हैं।
1: जी
0: जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे।

0: अद्भुत रचना है ये मुकेश जी के स्वर में। तो अब इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करते हैं इस पहले गीत के साथ। अमर फिल्म से ये गीत है, लता मंगेशकर के स्वर में, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद की बनाई धुन पर।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
2: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ओपी नैयर का संगीत बत किया। मजरू सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे हैं, गीता दत्त की आवाज है, फिल्म का नाम है आर पार।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत अलीबाबा और 40 चोर फिल्म से आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत है, एस एन त्रिपाठी चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें।
1: चलो चलो चलने हम बबूल के तले।

0: के जले।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर। आप सभी को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। आज है अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया TVF से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। जंजीर फिल्म से सुनाते हैं आपको ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के बोल, तर्ज बनाइए कल्याण जी, आनंद जी ने।
7: मैं जो थोड़ी सी जगह मिल

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती।
4: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
5: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
4: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
5: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
4: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को।

0: सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मिस्टर नटवरलाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
2: आज आपने ये कार्यक्रम सुना हम हेरा ही प्यार की अमिताभ बच्चन के गीतों से सजा हुआ ये कार्यक्रम था और इसी गीत के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाली हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ।

0: सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है।

0: इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
1: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
2: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
5: तो शुरू करें।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज MV रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3

0: भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं। पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो या खेलने की। लड़कों के साथ अलग व्यवहार और लड़कियों के साथ अलग। हालांकि इस मानसिकता में कुछ हद तक बदलाव आया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

जहां बच्चियों को देवी तुल्य मानकर पूजने की परंपरा है, वहां यौन हिंसा जैसी बातें मन को विचलित कर देती है। बच्चियों के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें, वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह हैं कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते? आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं, लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ दें, उनके कौशल को निखारें, उन्हें प्रशिक्षित करें और आत्मनिर्भर बनाएं।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत है। सुबह की ताजगी और नए सुरों की सौगात के साथ नए गानों के कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं पूजा नरानिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे देश के नाम इस गीत के साथ।

सेम बहादुर फिल्म का गीत शंकर महादेवन, विशाल डडलानी और दिव्य कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत था और भारत माँ की जय के साथ में माता के नौ रूपों को नमन कर रहे हैं हम। इस गीत के द्वारा भी हमने ये बात सुनी। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है। श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए माँ दुर्गा के नौ रूपों को नमन करते हैं और सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं और ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: उषा उत्थप और साथियों के स्वरों में माँ फिल्म का गीत ये आप सुन रहे थे। प्रणव वत्स ने इस गीत के बोल लिखे थे, हर्ष उपाध्याय ने संगीतबद्ध किया था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रामलीला फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में। सिद्धार्थ गरिमा के बोल हैं संजय लीला बंसाली का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को

हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हर बेटी के सपनों को पंख देने और उसे आत्मनिर्भर बनाने का संदेश है।

मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अल्तमश फरीदी की आवाज में। कौसर मुनीर ने इस गीत की रचना की थी, धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने।

0: जी हाँ, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये गीत भी बेटियों बालिकाओं के नाम था। फिल्म का नाम था जननेता। कृष्ण चैतन्य की आवाज थी। रितेश राव ने इस गीत को लिखा था। अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत था। श्रोताओं, आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी है। महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद कर रहे हैं। समाजवाद, समानता, अहिंसा और जन कल्याण के आदर्शों के लिए उन्हें याद किया जाता है। आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 11 अक्टूबर को हम याद करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और लोकतंत्र के सजग प्रहरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जिनका जीवन देश सेवा, सामाजिक न्याय और जनशक्ति में विश्वास का प्रतीक रहा। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की जागरूकता, उसके अधिकारों और उसकी भागीदारी में निहित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को विनम्र श्रद्धांजलि।
1: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
2: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ, अमिताभ बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
1: मीना कुमारी।
3: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
1: जीवन।
4: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
1: देव आनंद।
5: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। अर्जुन सूरी की आवाज में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। सोनू सागर ने इस गीत को लिखा है। विनय विनायक ने संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं झूम बराबर झूम फिल्म का गीत। के सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी की आवाजों में गुलजार के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर एहसान लोय ने। आज है अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन।

0: श्रोताओं, दमदार आवाज, बेमिसाल अदाकारी और शहंशाह वाले अंदाज के लिए मशहूर महानायक अमिताभ बच्चन, जो आज भी उतने ही सक्रिय और लोकप्रिय हैं, उन्हें जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। इसी खास मौके पर सुनिए, उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत। समीर के बोल है आदेश श्रीवास्तव का संगीत, कभी खुशी कभी गम फिल्म का नाम।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4।
0: अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाज़ी। साथ ही आवाज है अमिताभ बच्चन की।

कॉकटेल टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे प्रीतम, अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद किया था इस गीत को प्रीतम ने। अब कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

0: विनोद राठौर, करसन सरगठिया और साथियों के स्वरों में ये गीत आपने सुना हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई।
3: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
7: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
3: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर, जरूर सुनिएगा। और अब कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

लव यात्री। इस फिल्म का गीत देवनेगी योयो हनी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला ने इस गीत को लिखा था। तरिश्क बागची ने तर्ज बनाई थी। और अब इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार। और साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सुनते रहिए विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: हैं, लाइन वहीं से शुरू होता है।
1: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
0: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है।
1: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
2: उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
1: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
3: लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
1: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
4: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
1: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग, डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
5: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 1 2 2 1 1 2 3 4।
1: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी, और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
6: मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न अभी रात न दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
1: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
7: विकी, किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया है? बोलो कौन है वो माइकल आज जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों कमीनो, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
1: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
8: तुम्हारा नाम शेर खान है?
9: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
8: जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
9: साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
8: नहीं साहब। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
9: मतलब का बात बोलू साहब?
1: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई, और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
8: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे, और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
10: हाँ, क्यों?
8: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
1: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार।

0: इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए, जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
1: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
2: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
1: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
2: हार जाता है?
1: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
2: तो क्या जुआरी है?
1: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
2: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
1: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
2: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
1: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
2: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
1: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ
2: तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
1: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
0: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद है।
3: आज खुश तो बहुत हो गए तुम, देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
0: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
4: आइए आइए प्रेमो बाबू,
3: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
4: क्यों,
3: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
4: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
3: ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है, मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम, क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं, बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया मैं तो सुकुमार हूं ना,
5: लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं।

0: हूँ ना, और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूँ ना?
1: हूँ ना नहीं, है ना?
0: हाँ है ना। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है,
1: कंबख्त
0: क्या? परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी है। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
1: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
0: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
2: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
3: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
4: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. My name is Anthony Gonsalves.
5: What's that? This?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.
3: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
6: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
7: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो तुम मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
6: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं।
7: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
6: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
7: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम सर।
3: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
8: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पर वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप चाहें।

0: 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं, फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना, उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है, बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट पेयर जाना है।
4: अच्छा, वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार?
3: हाँ।
4: कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
5: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
0: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
6: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं मेरी मंजिल तू है।
7: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: साल 1984, अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका, फिल्म शराबी।
8: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दियो।
9: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
8: हो, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
10: सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
8: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
10: ये तो आपका बड़प्पन है।
8: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफर चट।
10: एक बात कहनी थी मालिक।
8: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक हो करके हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है?
10: सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है।
8: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में

0: आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
1: नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना?
2: नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
0: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
3: 2.5 लाख रुपया?
0: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा नथुलाल जी, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। क्यों चलो बट ठीक है हमने।
4: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें।
5: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
4: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
6: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश।
4: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
7: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
8: आई नो माई सिस्टर बेटर और यू।
9: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
8: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
10: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
4: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
11: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माई क्लाइंट सेड नो योर ऑनर And these boys must realize, no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, no means no।
4: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
12: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
0: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
12: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
0: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
12: विजय,

0: अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
1: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
0: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
0: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाएं, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें। क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज़ के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वज़न है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
3: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
4: आज के फनकार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ आप?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी।

0: थी मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, वीसीआर पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वो ही फिल्म देखने गया, और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था, और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेजिडेंट था, हाँ वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया,
1: जी
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं,
1: जी
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
1: हाँ
0: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ, और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था। आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था, और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला, मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो
1: जी
0: मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। Early 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा
0: हाँ तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगे रहे, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
0: मतलब
1: उनके
0: मेरा
1: पीछे?
0: लक तब था, ये तो 2001-2 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहां का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट कर।

0: करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर होके तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया है मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके। वहाँ से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया। और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड वन, रेड टू, आमिर, नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि चार या पांच छह एडी होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा। ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि चार पांच एडी सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम में कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है
1: जी। सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको वो ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं।
0: जी
1: कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और
1: हाँ,
0: डायरेक्टर्स का अपना
1: डायरेक्टर्स।
0: एक नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, ये विशाल भारद्वाज के
0: जी
1: साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा,
0: जी
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके भी
1: ऐसे
0: आते
1: भी
0: हैं।
1: कभी कभी होता है।
0: जी
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को कहता हूँ, पर्सनली मत लो, कि क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में। तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं ये तो
1: हाँ,
0: प्रोसेस
1: ऐसे
0: ही
1: भी
0: है?
1: थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है। उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई, मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो। कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को। और आपका टाइम आएगा, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
0: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते
1: हाँ,
0: रहिए। अगर
1: बिल्कुल।
0: हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत
1: नहीं,
0: कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने

0: बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के, हम जैसा कह रहे थे ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी
1: बिल्कुल
0: सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
0: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है.
0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल. लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा, और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए. वो मैं अनमोल आहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो. लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहां. आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया.
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जैसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही था, महीना या 1.25 महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे. बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे. काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो.
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे
1: हाँ,
0: हैं, और
1: और
0: पूरी
1: टाइम बहुत कम था.
0: जी. अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है.
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था.
0: जी, पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है. ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं. फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो,
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं. जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ओपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है. कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है. बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है.
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं.
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच?

0: बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में फिट
1: कोशिश करता
0: बैठेगा?
1: हूं कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है। एक्टर्स को लगता है कि अच्छा, ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
0: हाँ
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो। बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने।
0: जी
1: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई, अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा। अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी
1: हाँ,
0: और
1: और
0: उसके
1: फिर
0: बाद
1: एज एन
0: बस,
1: एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब
1: हाँ,
0: चीजें
1: ताकि
0: चुने।
1: जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं, जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो 4-5 दिन जाते हैं सारे टर्शियरी।

0: भी करते हैं। बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शियरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है। वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है उनको, जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
1: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
0: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
1: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
0: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
1: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
0: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखता है, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे,
0: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक अंदाजा।
0: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते हैं।
0: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
1: जी,
0: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो एक्टिंग। ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000।

0: दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो
0: हाँ
1: वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे,
1: हाँ
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है मुंबई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म
0: हाँ
1: से।
0: हाँ ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन लें?
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना।
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ, इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूं कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
1: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ। और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू।
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब

0: चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ. उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था. एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी. बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे. बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी. तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए. तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था. अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे.
0: मतलब तो, अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी,
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो. हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा. बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट. तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए. यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए. और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है. इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं. इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम,
1: रील्स, ह्यूमर, कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए. हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता. जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए. कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा.
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है. 4-5 जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है. वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको. लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा. घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे. अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली. तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में. बट मैंने ऐसे भी देखा कोई 2-3 ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे.
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं, और
1: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में. बहुत इजी हो जाता है. सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा. जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा. आपको 4 दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर. ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है.
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से.
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा.
0: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी, इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
1: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो. कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है. अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए. वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है।
0: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है।

0: कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन
1: नहीं,
0: हो?
1: उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस हैं। आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है, कौन है, सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं। अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में, कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे, उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है, या उसे मैसेज भेजिए, देखिए, रीच आउट करिए। अगर आप बम्बई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है,
0: जी
1: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
0: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: चूज करते, बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
0: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो
1: हाँ,
0: उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने
1: वो
0: कभी
1: नहीं,
0: वैसा नहीं किया?
1: हम आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था, और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों।
0: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
1: हाँ,
0: अच्छे तरह से।
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
0: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशक को कि हमें ये नहीं चाहिए?
1: एक बार हुआ था एक फिल्म में, अब मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है,
0: जी
1: मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट। लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई हैं कंपैरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का। तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
0: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
1: बिना।
0: आए और
1: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता।
0: तो वो आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है
1: हाँ,
0: उन्हीं
1: वो
0: की।
1: गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
0: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
1: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहां जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
0: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
1: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
0: तो आप अपने स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी

0: एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
1: नहीं,
0: बाद के लिए
1: पहले
0: छोड़?
1: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा, फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
0: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
1: ये मैंने
0: डायरेक्शन तो आपने कहा।
1: हाँ, वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी,
0: अच्छा,
1: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई। फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं, और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
0: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदगी कैसी है बहेली।
0: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं। आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्टर्स के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए, कोर्स खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जैसा कि आप जानते हैं कि विविध भारती हर महीने अपने स्टूडियोज में एक विशेष आयोजन करता है जिसका नाम है सृजन भारती। सृजन भारती के अंतर्गत कलाओं की बातें की जाती हैं, संस्कृति की बातें की जाती हैं, और चूंकि सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इसलिए विविध भारती ने एक विशेष आयोजन किया सृजन भारती के तहत, और कुछ कवियों को आमंत्रित किया गया और एक कवि गोष्ठी हुई जिसमें कुछ श्रोता और बहुत सारे कवि भी शामिल थे, और शामिल थे विविध भारती परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में आयोजित इस काव्य तरंग में शामिल कवि सुभाष कावरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा, और इस कवि गोष्ठी का संचालन किया रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो चलिए इसके संपादित अंश आपको सुनवाते हैं आज के विविधा कार्यक्रम में।
1: आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज के इस सृजन भारती के आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो गणमान्य कवि पधारे हैं आपका स्वागत, और जो प्रोफेसर रविंद्र जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में आपका स्वागत, और सभी जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं आप सभी का स्वागत। अब कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं। दरअसल आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन है इस सृजन भारती के इस आयोजन में। शब्द जब भावों से मिलते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब कविता स्वर पाती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। कविता महज शब्दों की सजावट नहीं, ये मन के उस कोने की आवाज है जहां भाव चुपचाप चलते रहते हैं। कभी ये प्रेम बनकर मुस्कुराती है, कभी समय के सवाल से रूबरू कराती है, और कभी जीवन की छोटी सी बात में कोई बड़ी सच्चाई कह जाती है। आज की सृजन भारती कुछ ऐसे ही शब्दों, संवेदनाओं और एहसासात के नाम है, जहां शेर व शायरी है, गीत है, गजल है, व्यंग, हंसी की फुहार पड़ेगी और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं दिल को छू जाने वाली ये खामोशी भी होगी जो सुंदर कविता सुनने के बाद देर तक हमारे भीतर, हमारे दिल में बसी रहती है, उतरती है। दरअसल ये जो कवि हैं शब्दों से दुनिया रचते हैं और अपनी कविता से हमारे मन में जगह बनाते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं उन कवित्री से जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा, एक प्रतिष्ठित कवि।

0: अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं, एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अनुवादक भी हैं। उनकी लेखनी कविता से लेकर बाल साहित्य, शोध और राजभाषा तक विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। भीड़ तो जिंदा है प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इसके अलावा फिल्म खानदानी शफाखाना और फिसड्डी वेब सीरीज सहित बहुत सारे रचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने गीत और गीतांश लिखे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित अनेक मंचों पर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ ये कर चुकी हैं। डॉक्टर दमयंती दीपा हिंदी लोक भाषा की सेवा में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो आइए डॉक्टर दमयंती जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आइए मंच संभालिए।
1: सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विविध भारती मुंबई का और विशेष रूप से ममता सिंह जी का, जिन्होंने आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बहुत ही शानदार आयोजन है उसमें मुझे आमंत्रित किया है। और मैं मंच में सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ मुंबई जैसे महानगर में और वो भी विविध भारती मुंबई के प्रांगण में, परिसर में इतना शानदार आयोजन करना, मुबारकबाद मैं इसके लिए इन सबको देती हूँ। क्योंकि हिंदी जो है वो केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, वो हमारा गौरव है, सम्मान है। और आप सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में वो प्रेम का एक सेतु है जो कि हम सब की भावनाओं को, हमारे शब्दों को एक साथ बांधता है और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है वह सेतु। तो हिंदी को हम सब अपने व्यवहार में लाएं और जो कि जैसा मैं देख रही हूं आज उसी उपलक्ष में यह आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। तो मैं आप सभी को भी मुबारकबाद देती हूं हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की। और दो माहिया मैं समर्पित करना चाहूंगी, सबसे पहले माँ हिंदी को।

तो ये तो थी हिंदी भाषा को समर्पित दो माइयाँ, और मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पर आऊंगी।

और एक मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम। जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश्मीर

हम हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब

बचा लो इस वतन के वास्ते। तो एक ये थे कुछ माही और मुक्तक। एक गीत आपके सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा।

0: धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि, मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहां हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ, जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं, उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ, जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है, दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई, जो इनकी कामयाबी में शामिल है। उन्होंने सिने गीतकार जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं, जो भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों पर आधारित है। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
2: आप लोग अनुमति दें तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया, 2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसके सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। उसी के लिए जिसने मुझे शायर बनाया। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। हर जन्म दिन पे उनको देते हैं हम बधाई, फिर भी ये कैसे पूछे कितने साल के हैं। तो एक मुक्तक और उनके लिए, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया। तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, इस बेखुदी ने देखिए क्या क्या बना दिया। पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। तो हंसकर कह दिया कान्हा ने।

इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर बेप्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानी श्याम घन, काला मेघ, तो काले मेघों के बीच से यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई पड़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से, अब बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। इतने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, मिली है प्रेम को एक दिव्यता मीरा दीवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। कभी आंसू कभी सपने कभी कांटे कभी खुशबू, मिला है देखिए क्या क्या बशर को जिंदगानी से। और मुंबई महानगर के निवासियों को ये शेर मैं भेंट कर रहा हूँ कि शहर की इस भीड़ से घबरा के इस दिल ने कहा अब मुझे एक झोपड़ी गंगा किनारे चाहिए, ये बताओ क्या तुम्हें भी चांद तारे चाहिए, या कि दिल के वास्ते दिलकश नजारे चाहिए। एक सीधी सादी गजल है कि हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के दिल पे हुकूमत जरूर करते हैं, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, वो हर किसी की शिकायत जरूर करते हैं, जिन्हें पता है बदी क्या अजाब ढाती है वो नेकियों की हिफाजत जरूर करते हैं। एक इंटरनेशनल शेर है, जिन्हें है फिक्र कि दुनिया में अमन हो कायम, वो कुछ नहीं तो इबादत जरूर करते हैं। एक शब्द है निजामत यानी संचालन, किसी का एक भी मिसरा जबानी याद नहीं, पर ऐसे लोग निजामत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूँ। तो इस कविता का शीर्षक यह है गृह स्वामिनी, कमर में खोस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो। कमर में खोस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो, छलक आए हैं माथे पर पसीने के कई मोती, तुम इससे बेखबर चूल्हे पे कोई डिश पकाती हो। सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुहाना लगता है हर पल तुम्हारा घर में यूं होना, सजा कर थाल पूजा का दिखो तुम लक्ष्मी जैसी, जलाकर दीप कर देती हो रोशन घर का हर कोना, सुबह से शाम तक घर को तुम ही गुलजार करती हो, बड़ों का मान रखती हो सभी का करती हो तुम आदर, तुम अपने पद से बच्चों से बहुत ही प्यार करती हो। देखिए आखिरी पंक्तियाँ, किचन में रोटी कैसे जलती है, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, तवे पे रख के तुम रोटी पलटना भूल जाती हो,

0: मोहब्बत से लगन से आशियां तुमने सजाया है, यही सच है, हमारे घर को घर तुमने बनाया है। यही सच है, यही सच है, हमारे घर को घर तुमने बनाया है। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में थे तब से लिख रहे हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 35 साल पहले की बात है। है ना, एक कतरे को दरिया समझा, मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा, मैं भी कैसा पागल हूँ, और पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, ख्वाबों को एक बच्चा समझा, मैं भी कैसा पागल हूँ, और कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, फन को खेल तमाशा समझा, मैं भी कैसा पागल हूँ। तन पर तो उजले कपड़े थे पर जो मन के काले थे, उन लोगों को अच्छा समझा, मैं भी कैसा पागल हूँ। बिछड़ने पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता है, और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है बेवफाई पर, यह लाजिम है कि अब इस पर नया कानून आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में जो है ना, कभी कभी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आप किसी जो है ना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, उसमें बीए एमए वाले भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को देख करके ये ख्याल आया एक गजल का, कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह वगैरह पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा। कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह। कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें, उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुरा

0: मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि, लोकप्रिय मंच संचालक, धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
1: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां अक्सर कहा करता हूँ। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा। मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ, आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है लेकिन मक्के की रोटी मक्के की रोटी है। कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है क्योंकि मक्के की रोटी है। ये तो नई पीढ़ी की बात थी।
2: आपने व्यंग लेख का जिक्र किया था तो मैं आपको एक छोटा सा व्यंग लेख सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है एक बंगला मिले न्यारा। वो मुझे एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिली थी, प्रेमचंद के कार्यक्रम में। मैंने अपना परिचय दिया, उनका नाम पूछा तो बोली आधुनिका। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर दिया और मुस्कुराकर चली गई। पर एक दिन दोबारा वो एक सिग्नल पे मिल गई। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि मुझे किश्तों में देखनी पड़ी। वो बोली, हे घर पर आओ ना, यही फर्स्ट राइट में है बंगलो नंबर 19। वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं। वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई। उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा, लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे। बोले, इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया। आधुनिका बोली, ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली, माय हनी। मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले। मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली, हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेज चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेज शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, देखिए मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली, जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है। कोशिश करूंगा।

0: कि आपके काम आ सको। बोले हाँ, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए, ये कौन है बेबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूं, तो वो खुश हुए। बोले वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो, कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली, मेरे पापा हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा, वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें। इनकी बात भी रखने की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढ कर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई ये स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो। कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी आधुनिका जी से प्रभावित ही था। मैंने चौक ढूंढने की कोशिश की, फिर वहां से स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो, तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही बाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक और वही पापा जी मिले, और आधुनिका भी वैसे ही मिले जैसी मुझे मिली थी। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: दोस्तों, हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने, कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ। ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15 20 25, और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी। वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग में यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब आती है, तो उसे कलयुग का नाम दिया जाता है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक व्यंग करना चाहता हूँ। शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके, तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। अलावा इसके, तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना, शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े। उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया, और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया। जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो। मैं अब ठीक हूँ, इसलिए अपने घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं। रोज रोज नई।

0: कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है, वो किसी भी विधा में लिखे, चाहे वो शायरी करे, चाहे गीत कहे, गजल कहे, व्यंग कहे, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ, शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग, जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हो और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। और अंतिम है, जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है। और उनके कुछ सीरियल्स हैं मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए, हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई हास्य के काव्य संग्रह है, और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है, और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है, और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो हैं आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी,
2: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर सुनिए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो धन्य थे सपूत, उनकी धन्य थी जवानियां, के कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको मां ने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया, वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले, कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहले

0: पात में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वतन के शहीदों को हमने अगर भुला दिया अभी, तो माए ना जलेंगी देशभक्त लाल फिर कभी। तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहाँ बसंती चोलों वाले आज कल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग।
1: क्या बात, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, क्या बात।
2: अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है, और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी उपस्थित हैं। और हम प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं। वो कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है। और थोड़ी जानकारी देते हैं उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल फिर से, प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही। और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर 12 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने। 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है, और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं। तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद में गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर 1 वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत, और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है, और जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, 4 लाइनें हैं कि सिर्फ आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वाह काल जी कविता है। तो काल जी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सभी चीज को जान चुके हैं, यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वांग्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं 5, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्र क्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मितोपदेश युजे। इसमें सब कुछ तो है, लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता सम्मित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता सम्मित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है।

0: है, हम किस मौसम में बैठे हैं, वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन दूसरों को देने के लिए, उस आनंद, उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वे हमें ये सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहृदयता से रहें और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से, जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य की, इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में अवगाहन किया है, हम जो इसमें डूबे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो, व्यंग्य हो, लेकिन जो उदात्तता इनकी कविताओं में है, जो जीवन की श्रेष्ठता है और हमने जिस आनंद का इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बा समुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली में निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य

0: राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत चित्रगुप्त का यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से ये गाना है, उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत A.R. रहमान का। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम जारी है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है प्रीतम का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगेला।
3: काई पोछे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

जौहर महमूद इन हांगकांग इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में कमर जलाल आबादी के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर जिसने मेरे मन को छुआ, तेरी बिंदिया इसमें साफ नजर आती है। हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये दोस्ती ये यारी कभी नहीं छूटेगी। मेरे साथी तेरे बिना कैसा जीना, पर कभी कभी दिल ये सोचता है क्या आदमी जो सोचता है वो होता है। पता नहीं जाने कैसे कब मैं इस हंसी चीज का तलबगार हो गया। मेरे दिलबर कब तक मुझे तड़पाओगे, अब मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूँ। और हाँ श्रोताओं, आपने पहचान लिया कि वो कौन है। जी हाँ, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। यही बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है और ये भी लिखा है कि उनके फिल्मों के गाने और उनकी बातों से सुरीला सफर और भी आनंददायक हो जाएगा। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दर्शकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। आप केवल सिनेमा के महानायक नहीं, बल्कि लगन, संघर्ष और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। आपको जन्मदिन पर उत्तम स्वास्थ्य, सुख और खुशियों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, इन बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। एक बेमिसाल अदाकार के लिए बेमिसाल फिल्म का सबसे पहले ये गाना, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन राखी और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया बेमिसाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत में कोई साधारण पंक्तियां नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें दिल के एक पूरे सफर का निचोड़ है, जिसमें तस्वीर की खूबसूरती से शुरू होकर मन को छूने वाली मासूमियत है। बिंदिया की चमक में बसे प्यार का इकरार, ख्वाबों की मीठी उड़ान और दोस्ती यारी की अटूट कसम तक सब कुछ सिमटा हुआ है। फिर उसी में जुदाई का दर्द भी है कि तेरे बिना जीना कैसा। तो कभी कभी उठता वो गहरा सवाल भी कि क्या सोचा हुआ सच में होता है, और इसी उलझन के बीच वो अनजाना सा एहसास जब इंसान हौले हौले किसी हसीन चीज का तलबगार बन जाता है, तड़प इंतजार और आखिर में अपनी पहचान की तलाश। सच कहें तो आज की इबारत एक आशिक, एक दोस्त और एक सोचने वाले इंसान की पूरी कहानी कह जाती है। जी हाँ, आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की फिल्म के गाने हम आपको सुनवाएंगे, और या यूं कहें कि सुनवा रहे हैं। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्मों ने मात्र मनोरंजन ही नहीं किया, समाज

को एक दिशा भी दी है। उनका भी शुरू का सफर बड़ा आसान नहीं रहा, लेकिन वे संघर्ष करते रहे और प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर उनके जीवन में एक तूफान सरीखी आई, जिसने फ्लॉप हीरो का ठप्पा हटा दिया और वे रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार रहता था और सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्मों के टिकट एडवांस में बिक चुके होते थे। उस महानायक पर हमें गर्व है। और आज कुछ एक दो सवाल हैं हमारे। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं जिसमें से कुछ तो हमारे श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं। और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो, तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ, याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत। अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही हैं, ये आप बताइए।

अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुना है आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नजर आती है, हर किरदार का तलबकार युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित ये जो सफर है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक साथी लिखते हैं, त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और एक साथी लिख रहे हैं, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक साथी ने शोले फिल्म के लिए लिखा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये फिल्म का मशहूर गीत है जिसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए याद किया जाता है। और एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है, विजय विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है। और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिव हरिका। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का ये डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ही चाबी निकाल कर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद है। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन 4 दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये देना चाहिए? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहाँ तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए ये मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज़, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

गद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वाभिमान से कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने

तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है कि आप जी हजारों साल। ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

क्या करती है। एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के आवाज़ का गाया हुआ फिल्म एक नज़र का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज़, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ा उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियाँ बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज़ की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंगमैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज़, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्ति, तो ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी हैं, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीज़ें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय हैं। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना डॉन फिल्म का गाना।

नमस्कार, मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी माता पिता के जीवन में रंग भरती है और घर को अलहड़ शरारतों से गुलजार करती है। उसके होने से मन को सुकून मिलता है। गहरी तकलीफ में वो हौसला बंधाती है और उसकी खिलखिलाहटें दर्द में भी हंसने का बहाना देती है। घर को सचमुच घर बनाती है बिटिया। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या उसे देखकर हम ये कहते हैं, उसकी बातों में शहद सी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके अनार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या बेटी के जन्म लेने पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना बेटे के जन्म लेने पर? बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियों के आने पर बाह पसार कर उनका स्वागत कीजिए।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं, पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार

में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो या खेलने की, लड़कों के साथ अलग व्यवहार और लड़कियों के साथ अलग। हालांकि इस मानसिकता में कुछ हद तक बदलाव आया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

जहां बच्चियों को देवी तुल्य मानकर पूजने की परंपरा है, वहां यौन हिंसा जैसी बातें मन को विचलित कर देती है। बच्चियों के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें, वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह है कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते? आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं, लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ दें, उनके कौशल को निखारें, उन्हें प्रशिक्षित करें और आत्मनिर्भर बनाएं।

0: मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो सभी सेवाएं सामान्य रूप से

0: के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
1: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
0: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
2: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
0: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
4: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमा

0: सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
2: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे
1: मन चाहेगी।
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे मंजू द्विवेदी के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल

0: नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनिता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाज़ों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृषिव नारंग। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है, वो है दीवाना फिल्म का गाना। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जान चाहेगी।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
3: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
4: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
5: ओए देख के चलो, तुरी जाना है ना तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
6: ओए केड़े पिंडो आया है?
5: पता नहीं तेनू शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
3: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थीं।
7: क्यों जी, कुछ बात बनी?
4: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
7: क्या कहते हैं?
4: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
7: इसका मतलब?
4: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
7: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला काटी।
8: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
7: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
4: कोशिश करेंगे।

0: जमाने में ये भी कौन करता है। दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
1: हो सकता है।
0: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
2: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
0: आए हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
2: ओहो, लेकिन वो
0: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
2: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
3: अरे आइए आइए शर्मा जी।
4: नमस्ते
3: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब धन्य भाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे।
4: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप,
3: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं
4: हैं। आप तो जानते ही हैं दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
3: हाँ आप बैठिए।
4: हाँ बस मैं ठीक हूँ ठीक हूँ।
3: और सुनाइए।
4: वो बस ऐसा था कि
3: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
4: जी नहीं,
3: पानी है सोडा?
4: नहीं नहीं मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता।
3: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
4: वो बात ये है मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
3: आई डोंट ड्रिंक।
4: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, दरअसल हुआ क्या कि अचानक
3: यू नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
4: हाँ हाँ
3: आप इसे अपना ही घर समझ।
4: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
3: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
4: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
3: हाँ क्या हुआ?
4: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
3: चक्कर? घनघोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
4: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
3: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की हूँ, बहुत कोशिश की।
4: फिर आपने क्या किया?
3: बहुत कोशिश की हूँ।
4: फिर आपने क्या किया?
3: मैंने
4: हाँ हाँ आपने क्या किया?
3: मैं ऊपर गया।
4: हाँ
3: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
4: फिर
3: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
4: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई? फिर
3: मैं और ऊपर गया।
4: अच्छा फिर
3: वहां भी न रुके
4: तो
3: मैं और ऊपर गया।
4: और वहां? हाँ फिर वहां क्या हुआ?
3: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
4: और वो लोग?
3: वो लोग नहीं माने।
4: फिर आपने क्या किया?
3: करना क्या था, कह दिया उनसे।
4: क्या
3: कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
4: छुट्टी ले ली? कितनी?
3: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
4: लेकिन इतनी लंबी ली?
3: मेडिकल,
4: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
3: नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
4: जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
3: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
4: क्या मतलब?
3: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा लीवर।
4: हाँ हाँ जिगर जिगर।
3: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
4: हाँ और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
3: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर।

0: हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
2: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
1: तो क्या करूं फिर?
2: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
2: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
2: ओ, जो कोई भी हो, उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
2: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता।

0: क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर ना चाहते हैं।
1: ठीक ही तो कहता है किशन, ऊंच नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिल आई जाकर सुबह उससे।
2: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
1: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
2: और उषा?
1: उषा, उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
2: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ।
1: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
3: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
4: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
3: मौत से पहले मन में कायरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
4: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
3: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आह पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
4: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
3: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो।
4: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
3: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
4: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
3: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
4: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
3: कैसी भूल उषी?
4: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
3: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
4: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
3: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए बचा के रखो। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
4: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
3: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
4: तो
3: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
4: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
3: क्या?
4: हम शादी कर ले।
3: ये कैसे हो सकता है?
4: बारात लाकर, बाजे बजाकर।
3: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
4: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरे शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है।
1: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
2: क्या बात है?
1: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
2: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
1: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
2: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
0: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
2: घनश्याम जी?
0: ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
2: जी
0: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम?

0: जी
1: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
0: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
1: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो
0: नहीं
1: लेकर
0: नहीं
1: के
0: नहीं
1: आ।
0: उसकी जरूरत नहीं है,
1: हाँ
0: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
1: हुक्म दें।
0: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
1: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
0: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
1: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूं और ये ट्रांसफर रुकवाता हूं। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: क्यों खड़ा है?
0: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
0: नहीं नहीं मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ, अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
0: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं गया क्यों भाई साहब? ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर।
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए।
1: कहिए क्या बात है
0: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
1: ठीक है बोलिए।
0: उनसे मिलना है।
1: अपॉइंटमेंट लिया है?
0: नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
1: तो फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
0: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
1: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
0: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
1: आपका नाम?
0: HP शर्मा।
1: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
0: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
1: इधर पीछे नल है।
0: थैंक यू।
1: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
0: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी, कहिए।
0: जी मैं HP शर्मा।
4: हाँ काम बताइए।
0: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
4: वही तो पूछ रहा हूँ
0: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
0: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
0: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
0: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
0: जी, HP शर्मा हूँ, HP शर्मा। देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
4: ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
0: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
0: मैंने सोचा आपसे जबानी ही।
4: अरे साहब इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
0: नहीं वो मैं अभी लिख लाता हूँ।
4: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
0: नहीं नहीं पानी वानी का कष्ट न करे मैं।
4: हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
5: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
6: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे।
0: हाँ, आना तो था बस।
6: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके

0: मिनिस्टर कौन है?
1: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
0: नो नो नो, मैं ये अफसरों अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
1: जी
0: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कांटेक्ट की बात है।
1: जी
0: कांटेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
0: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
0: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा।
0: अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
0: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
0: अम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप ही सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
0: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
1: नहीं नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
0: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
2: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
2: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
1: मगर इतना पैसा
2: तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
3: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
4: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
1: जो भी हो से बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ। हाँ
2: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ी, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
4: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
2: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
4: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
1: मैं समझता हूँ महाराज।
4: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
1: सच बाबा?
4: हाँ देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
1: 1.5 तोला सोना?
4: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
1: राजवंती 1.5 तोला सोने का दान?
2: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है बाबा, अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
4: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
1: सच कह रहे हैं आप?
4: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि को बैठेगा, फिर रास्ता को बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
1: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
5: माजी माजी माजी
6: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
5: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं परंतु 201 ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
6: हाय भगवान ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
7: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
8: पिताजी ये आपसे मिलने आए थे।
1: ओह आप क्या
7: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव।
2: तेरी महिमा अपरंपार।

0: अरे भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवाओ।
1: आइए चंद्रकांत जी।
0: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए।
2: चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं, ये चंद्रकांत
0: क्या ब्राह्मण नहीं?
2: सीके यादव है
0: तो क्या ब्राह्मण?
2: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
0: क्या कह रहे हैं आप?
2: ये हमारे लिए यमदूत है। ये वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
2: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
0: राम, कैसा अंधेर है। अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी से।
1: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
0: आइए आइए, अय्या का भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
1: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
3: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
0: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
3: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
1: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
3: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
1: तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
3: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
0: तुम सचमुच आ गए हो?
3: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
4: कहाँ के रहने वाले हो?
3: इंदौर का।
4: और तुम्हारे पिताजी?
3: इंदौर के।
4: और तुम्हारे दादा?
3: दादा, परदादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
4: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
3: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊंगा।
4: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
0: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते।
3: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
0: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, अब क्या होगा?
4: जाने का समय आ गया है बेटा।
1: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
0: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
1: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
5: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
4: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
3: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान है?
4: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
3: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
5: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
4: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
6: 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसिर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए।

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का।

0: उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
1: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
1: ये भी तो एक हिस्ट्री है।
0: ये भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहां से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
1: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
0: जी हाँ,
1: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं साईं

0: पाठ।
1: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
2: जी जी,
1: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
2: अरे क्या बात है,
1: क्योंकि जगदीश आया था, मेरे दो गाने अरेंज करने हैं, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने मुझे अरेंज में, तो जैसे दूसरे में जो अटर थे तो ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज किए, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली, क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
2: जी।
1: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक लेंगे, तो म्यूजिक कौन, जगदीश।
2: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
1: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
2: ओ
1: म्यूजिक टीचर थे।
2: अच्छा
1: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए
2: जी,
1: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है।
2: अच्छा,
1: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
2: मनोज जी ने कहा।
1: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह।
2: अच्छा,
1: म्यूजिक एक्टर। मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का। अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए, मनोज साहब बुला रहे हैं, मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसे ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
2: मनोज जी का बैनर, VIP
1: राज कपूर, VIP मतलब
2: जी
1: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
2: जी,
1: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं, जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही, तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैं कहा नहीं नहीं आप बताइए। मतलब देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है जहाँ

0: लोग मिस्टर खत्म होते हैं वहां से तुम शुरू कर रहे हो,
1: जी,
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह,
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम मिस्टर डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी भूली नहीं? बोले कभी मौका ही नहीं आया।
1: अरे
0: आप
1: गजब,
0: तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो,
1: ये पिताजी की बात है।
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद,
1: जी,
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ विंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ,
1: हाँ
0: वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है
1: हाँ
0: दादाजी का और महेंद्र कपूर का।
1: हाँ
0: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो,
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग कहा रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका,

0: इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: कब तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
1: तो हमने पेंडर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
1: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
1: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनु सब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
1: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
1: और इसको
0: गाने की शक्ल
1: गीत में गाना देना। कब तलक शम्मा जली,

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने उस वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है,
1: आता
0: हाँ
1: है, फिर आता है।
0: ब्रेक आता है फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, 4 अंतरों का गाना था।
1: जी जी
0: मैंने कहा मनोज साहब 4 शेर हैं, 1 शेर कम करें ना, तम
1: कुछ हटेगा नहीं।
0: लाजवाब शेर हैं,
1: जी
0: इनको कम नहीं कर सकते,
1: और अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल
1: महेंद्र
0: थी। और
1: कपूर,
0: फिर
1: लता
0: देखिए
1: जी।
0: फिर अपना हमने पूरे 4 के 4 अंतरे रखे,
1: जी
0: चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है,
1: हाँ हाँ
0: कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही हैं, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है।
1: हाँ
0: विद म्यूजिशियन 1 टेक है ये गाना,
1: क्या बात है।
0: 6 साढ़े 6 7 मिनट का गाना है,
1: जी जी जी
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें, तो
1: हाँ
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट।
1: अच्छा।
0: बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े म्यूजिक्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े म्यूजिक्टर या एलपी का गाना है या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए म्यूजिक्टर हैं, ऐसा गाना नए म्यूजिक्टर, म्यूजिक्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
0: चाहती, जब याद की बदली चाहती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है। क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: देखिए इतने मुखड़ा है,
1: जी
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है।
1: बिल्कुल,
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन है।
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाएं।
1: जरूर, बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी,
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चन परदेसी, पंजाबी,
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी हिट,
0: सुपर हिट फिल्म थी।
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी
1: चन परदेसी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और
0: जी
1: बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था
0: अच्छा
1: उसमें, बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी
1: का
0: जी
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहाँ से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा।
0: जी
1: तो उन्होंने बारिश शुरू की, तो बारिश के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे,
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की
1: पूरी
0: फिल्म
1: पंजाबी।
0: थी, स्मिता
1: हाँ,
0: पाटिल और राज बब्बर।
1: राज बब्बर की फिल्म थी वो, और उसके
0: जी,
1: गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे, ये
1: कैमरामैन थे, यस
0: बताइए।
1: कैमरामैन थे। क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना,
0: जी
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है,
0: जी जी जी जी
1: क्या लोग थे।
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, तो दीदी का मैसेज आया
0: जी
1: कि
0: लता
1: कल,
0: दीदी,
1: हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो, क्योंकि मैं इस गाने के लिए 1 महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो
1: मेरे
0: इतनी
1: प्यार।
0: सनम।
1: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को,
0: जी
1: जाके आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते हैं, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने,
0: अच्छा,
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई है।
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, नहीं यार, ये सब आवाजें जो हैं ये सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल
1: सात आठ
0: पार्ट है
1: फीमेल
0: आपके पास।
1: पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए, मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, दिन कड़क, और दीदी की
0: बोले
1: आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाइएगा,
0: जबकि वो तो कैमरामैन थे
1: कैमरामैन
0: ना,
1: थे,
0: और गायकी शौकिया थी।
1: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था, और एक किसी और म्यूजिक का भी गाया।

0: मैंने कहा मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। उन्होंने घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई। और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है।
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना,
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना।
1: जी
0: सुना जाए इसको।
1: जरूर, आप थोड़ा गाइए।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काम करता हूं इसको, आप जो है वो बजाएगा, मैं लोग आता हूं।
1: जी ठीक है।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था, हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तो याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और वारिस हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है
1: और दिल तो पागल से शुरू होती है।
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी।
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी।
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजिली बन जाएंगे।
0: जी,
1: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो।
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही।
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही।
0: हाँ।
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है।
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
0: गजब।
1: तो मनोज जी ने मुझे, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया और घर आते ही वो शुरू हो गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
0: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई,
1: तुमसे जो बात,
0: ये जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना।
1: जी।

जबून चुपचाप घड़ियों का मुझे

0: तुम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो
0: जी,
1: वसंत देसाई हो या चित्रगुप्त जी हो या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा एज ए अरेंजर, काम बढ़ता चले गया
0: जी।
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं
0: जी।
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं। और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर ली है तो ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा।
1: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी
0: जी।
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा
0: जी।
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ,
1: काम में कन्वर्ट नहीं हुआ। और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे
0: जी।
1: पेंटर बाबू को जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में कि बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर डी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तुमने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
0: कायम रहेगी,
1: मेरे साथ कायम रहेगी, वो संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
0: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है
1: जी। इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है
0: जी,
1: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है
0: जी। जी,
1: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
0: बिल्कुल,
1: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है
0: जी।
1: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर

0: पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
1: जी
0: लता मंगेशकर अवार्ड, तो मुझे दिया गया। तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
1: जी
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तू तो कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है,
1: जी।
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और
1: जी
0: मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए,
1: जी
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी, उन्हें वो
0: कहानी सुनना
1: चाहिए। बात की बात है, क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके,
0: जी
1: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं, राइटर, कवर जलालाबादी राइटर थे, वो बैठे हुए हम लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश का ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे,
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग में ही छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे,
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साई बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
0: जी,
1: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
0: जी,
1: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
0: जी।
1: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया। तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया, मैंने कहा ये मेरा। तो जगदीश का, जगदीश के पहले दो गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने
0: जी, उसमें से दो जगदीश जी के थे,
1: डेढ़ जगदीश का,
0: डेढ़ थे जी हाँ।
1: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
0: जी,
1: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया, उत्तम ये लिख लिया, हो गया। नारायण अग्रवाल का एक गाना है
0: जी, जी।
1: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है। और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
0: जी जी।

0: की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है।
1: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का चौथा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: उजाली।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

107.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

शाम की ठंडी हवा और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर जैसे दिन भर की थकान चुरा लेती है। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई बिना मांगे सलाह देता है और कोई बस मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। सच्चे दोस्त शायद वही होते हैं जिनके सामने हमें खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ चुप्पी भी बातचीत जैसी लगती है। कभी जीवन की बड़ी समस्याओं का हल किसी बड़ी किताब या भाषण में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर की गई एक सच्ची बातचीत में मिल जाता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री।

दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस खास मौके पर आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व आते ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा, श्रद्धा और सकारात्मक घुलने लगती है। मंदिरों में गूंजते माता के जयकारे, घरों में जलते दीपक और भक्तों के मन में उमड़ती आस्था हमें यह एहसास कराती है कि शक्ति केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं जो हमें साहस, धैर्य, करुणा, ज्ञान और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। लेकिन इस पर्व का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब हम माँ की आराधना के साथ साथ उनके स्वरूप में संसार में आई हर बेटी का भी सम्मान करना सीखें। दोस्तों, संयोग देखिए कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का संदेश भी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। जिस समाज में कन्या को देवी मानकर पूजा जाता है, उसी समाज में हर बेटी को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि यह कैसी विडंबना है कि हम नवरात्रि में कन्या पूजन तो करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन कई बार वास्तविक जीवन में बेटियों की इच्छाओं, उनकी शिक्षा और उनके फैसलों को उतनी अहमियत नहीं दे पाते। इसका क्या कारण है, ये हमें खुद में तलाशना होगा। हर बेटी अपने भीतर एक नई दुनिया बसाए होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहती है तो कोई वैज्ञानिक, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, तो कोई देश की सेवा के लिए वर्दी पहनने का सपना देखती है। उसकी उड़ान को रोकने के बजाय अगर हम उसे भरोसे का आसमान दें, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बड़े बड़े भाषणों की या नसीहतों की जरूरत नहीं होती। कभी उसकी बात ध्यान से सुन लेना चाहिए, कभी उसके सपनों पर विश्वास करनी चाहिए और कभी मुश्किल समय में उसके साथ मजबूती से खड़ा हो जाना भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों, नवरात्रि हमें शक्ति की पूजा करना सिखाती है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उस शक्ति को पहचानने का अवसर देता है जो हर बेटी के भीतर मौजूद है। हमें यह समझना होगा कि बेटी किसी परिवार की जिम्मेदारी भर नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद, उसका आत्मविश्वास और समाज की प्रगति का आधार है। तो दोस्तों, आइए इस नवरात्रि हम माँ दुर्गा के सामने सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ साथ यह संकल्प भी लें कि किसी बेटी का सपना परिस्थितियों के आगे दम नहीं तोड़ेगा, उसकी आवाज अनसुनी नहीं होगी और उसकी पहचान कभी किसी भेदभाव की मोहताज नहीं बनेगी, क्योंकि सच्ची आराधना प्रार्थना के साथ साथ अपने व्यवहार में सम्मान, समानता और संवेदना उतारने से पूरी होती है। माँ की शक्ति को हमारा नमन तभी सार्थक होगा जब हर बेटी को अपने जीवन की शक्ति बनने का अवसर मिलेगा।

0: खत्म दुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों कार्यक्रम के इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और चलिए बात करते हैं जय प्रकाश नारायण जी के बारे में। इनका नाम लेते ही मन में एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर उभरती है जिसने अपना पूरा जीवन देश समाज और आम आदमी के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें लोग प्यार से लोकनायक कहते हैं और यह संबोधन केवल उनके नाम के साथ जुड़ा शब्द नहीं बल्कि उनके संघर्ष साहस और जन सेवा की पहचान है। 11 अक्टूबर को उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं होता जो केवल सत्ता के गलियारों में दिखाई दे बल्कि वह होता है जो आम लोगों के सुख दुख को समझे और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाए। जयप्रकाश नारायण ने आजादी की लड़ाई में

हिस्सा लिया और स्वतंत्रता के बाद भी देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली ताकत जागरूक नागरिकों, ईमानदार व्यवस्था और जनता की भागीदारी में होती है। जब उन्हें लगा कि देश की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, तो उन्होंने युवाओं को साथ लेकर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनका यह विचार केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के नैतिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव चाहते थे। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित को रखा। सत्ता उनके लिए कभी मंजिल नहीं रही, जनसेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य रही। आज जब हम भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और नागरिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तब जयप्रकाश नारायण जी के विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। दोस्तों, उनकी जयंती मनाने का अर्थ केवल उन्हें याद करना या उनके योगदान को याद करना नहीं है सिर्फ, बल्कि असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे और समाज में ईमानदार और समानता को बढ़ावा देंगे। जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत बड़े पद से नहीं, बल्कि एक जागरूक सोच और मजबूत इरादे से होती है। उनका जीवन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो देश को बेहतर बनाने का सपना देखता है और उस सपने को सच करने के लिए अपना योगदान देना चाहता है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में। दोस्तों इनका नाम लेते ही हमारे सामने सेवा, समानता, सहयोग और उदारता से परिपूर्ण एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व की छवि उभरती है जिन्होंने समाज को जोड़ने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। महाराजा अग्रसेन जयंती केवल एक महान शासक को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके उन विचारों को अपने जीवन में उतारने का भी दिन है जो आज के समय में भी समाज को नई दिशा दे सकते हैं। महाराजा अग्रसेन को उनकी न्यायप्रियता और लोक कल्याणकारी सोच के लिए याद किया जाता है। उनके जीवन से जुड़ी परंपराओं में एक विशेष विचार का उल्लेख मिलता है, समाज का कोई व्यक्ति नया जीवन शुरू करने आए तो उसे सहयोग और सम्मान दिया जाए, इसी भावना से जुड़ी एक एक ईंट और एक एक मुद्रा देने की परंपरा प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका मूल संदेश बहुत ही सुंदर है कि किसी जरूरतमंद को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। समाज तभी मजबूत बन सकता है जब उसकी प्रगति में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। दोस्तों महाराजा अग्रसेन की विचारधारा हमें यह भी सिखाती है कि समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल धन इकट्ठा करना नहीं बल्कि उस धन और सामर्थ्य का उपयोग समाज के कल्याण में करना है। यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, किसी परिवार को सहारे की जरूरत है या कोई युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवसर तलाश रहा है तो उसकी मदद करना ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का सच्चा रूप है। आज के दौर में जब लोग अक्सर अपनी व्यक्तिगत सफलता की दौड़ में व्यस्त हो जाते हैं, महाराजा अग्रसेन

दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्री को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए।

0: आपकी चॉइस हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो हेलो
3: हेलो,
0: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते सर। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना परिचय दें।
1: जी हम सविनाथ शर्मा बोल रहे हैं, रामगढ़ कौन सुंदर से।
0: जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप।
1: ये घर पर ही साजन का दुकान है।
0: जी जी, और सर आपके परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में।
1: पापा मम्मी है, भाई बहन भैया भाभी सब है, भतीजा लोग हैं।
0: जी
1: हम तो रेडियो हर समय से सुनते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं, अब त्योहारों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो सिलसिला है शुरू हो रहा है और अब
1: नवरात्र आने वाला है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी।
1: नवरात्र पर तैयारी अच्छा है, साफ सुथरा हर जगह पंडाल सजेगा इस समय।
0: जी
1: जी,
0: और पूरे श्रद्धा और दिल से माता रानी के आगमन की आप तैयारी कर रहे हैं।
1: जी जी
0: तो ऐसे में एक जो समाज के लिए जो संदेश है बेटियों के प्रति, क्या कहना चाहेंगे।
1: हम कहेंगे माता रानी के साथ सबका अच्छा व्यवहार, अच्छा मन से लगन से श्रद्धा से अपना भक्ति करें।
0: जी बिल्कुल, पूजा पाठ आप करें श्रद्धा से करें और साथ ही साथ समाज में जो चीजें चल रही हैं उसके प्रति आप सतर्कता रखें और जागरूकता फैलाएं कि मतलब किसी भी प्रकार का गलत काम हमें नहीं करना है और उसका सपोर्ट भी नहीं करना है।
1: नहीं नहीं सपोर्ट रहेगा कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: अच्छे ढंग से कोई कार्य होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और माता रानी हो या फिर कोई भी त्योहार हमें यही सिखाता है कि हम सद्मार्ग पे चलें और अपना काम ढंग से करें, अच्छे से करें।
1: कोई भी त्योहार हो अपना प्रेम भाव से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए।
0: जी जी,
1: मिलजुल कर त्योहार को मनाना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो सर आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी।
1: जी माता जी रानी की ही मान सुना दीजिए, चलो बुलावा आया है मुझे, माता ने बुलाया है।
0: जी बिल्कुल सर। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा भजन।

0: हेलो, नमस्कार
1: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
0: मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।

0: जी सर, तो सर अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं।
1: जी, मैं तो अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ। मेरी उम्र 85 साल चालू है, मगर बचपन से थोड़ा
0: जी
1: सा संगीत के प्रति लगाव होने के कारण
0: जी
1: वो आज तक जो मेरा छंद है, जो मेरी चाहत है, वो आज तक जिंदा है बहन।
0: बिल्कुल सर। और ये जो हमारा जो शौक होता है, अगर इसको हम लंबे समय तक लेकर चलते हैं, तो वो कभी बचपन की बातें भी धूमिल नहीं पड़ती हैं।
1: क्या बात,
0: तो
1: ये तो वैसा देखे ना बहन जी, पहले
0: जी
1: मैं 1952 से रेडियो से जुड़ा हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 7वीं कक्षा में, तो रास्ते से गुजरते वक्त किसी होटल के रेडियो से कोई गीत की धुन बजी तो मेरे पाँव वहां पे ठिठक जाते थे और
0: जी
1: फिर वो खत्म होते ही मैं आगे निकल जाता था।
0: क्या बात है सर, 1952 की आप बात बता रहे हैं कि तब से लेकर अब ये 2026 है, और क्या बात है कि रेडियो से ये जुड़ाव इतने लंबे समय से बस चला ही आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो सर, जैसा कि नवरात्रि है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ, आपकी क्या तैयारियां हैं?
1: ये नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ये जो त्योहार आते हैं,
0: जी
1: एक अपने पौराणिक और धार्मिक विधि को ख्याल में रखते हैं, उसका निर्वहन करते हैं।
0: जी
1: मगर जो एक बचपन में हमारे जो उत्साह त्योहार के प्रति आकर्षण था, वो
0: जी
1: आज दिखाई नहीं देता है। इसका कारण है कि हमारे बचपन में सिर्फ दिवाली को ही नए कपड़े, कुछ घर
0: जी
1: में मिष्ठान, खाने पीने की चीजें बनती थी और हम त्योहारों का बहुत दिन से इंतजार करते थे।
0: बहुत सही कहा सर। बचपन की वो जो हमारा जो इंतजार होता था कि कपड़े खरीदने हैं, मिठाइयाँ आएंगी।
1: जब पारिवारिक परिस्थिति, समाज की परिस्थिति
0: जी
1: बहुत ही बिकट थी, भगवान की
0: जी
1: दया से सुपन्नता है, काला ये तस्मे नमा।
0: बिल्कुल। उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बाहर रह के अपना काम कर रही हैं और जीवन की चुनौतियों को लेकर चल रही हैं?
1: जी, जो बाहर रहते हैं, अपने जो भी मजहब है आपका, उसको भूलना नहीं चाहिए। अपना जो एक संस्कार माता पिता ने दिए, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सर, और यही हमें जीवन में तरक्की के रास्ते पर आगे लेके चलता है। तो सर, आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: फिल्म छाया 1961 में बनी थी, गीत
0: जी
1: के बोल है, इतना ना मुझे से तू प्यार बड़ा के मैं एक बादल आवारा।
0: बिल्कुल सर, और हम आपकी पसंद को इस गीत के साथ पूरी करते हैं।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश,
1: हाँ जी,
0: कहाँ से बोल रही
1: हम
0: हैं?
1: यहाँ सोनभद्र ओबरा से बोल रही हूँ, रंजना वर्मा
0: जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए अपने
1: जी।
0: बारे में, अपने परिवार के बारे में।
1: सब बहुत बढ़िया है, माता रानी कृपा है।
0: बिल्कुल। और
1: अब
0: अब
1: माता
0: तो
1: रानी आने वाली है।
0: जी, और माता रानी का दिन अब शुरू हो चुका है और ये 9 दिन की जो
1: हाँ
0: यात्रा है यूं ही चलती रहेगी बहुत प्रेम के साथ।
1: हाँ हाँ और वो तो है ही है, जब माता रानी आने को होती है
0: जी
1: तो इतना मन शांत हो जाता है, इतना खुशी महसूस होती है कि ब्रह्मांड से जब पृथ्वी पे आती है माता रानी तो कितना खूबसूरत माहौल बन जाता है।
0: माँ शब्द ही अपने आप में हर चीज की
1: हाँ
0: पूरक है।
1: बिल्कुल, और हम बच्चे उनके माँ की गोद में बैठ जाते हैं तो सारी
0: जी
1: अशांतियां और सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। हाँ 9 दिन का माहौल इतना अच्छा रहता है, पूजा पाठ होता है, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं,
0: जी जी
1: 9 दिन का कलश रखते हैं, कंजिकाएं खिलाई जाती हैं, और सब अपने अपने हिसाब से करती हैं, सब स्त्री
0: त्यौहार।
1: पुरुष सभी लोग मिलके करते हैं पूजा।
0: जी जी
1: बच्चे भी कितने खुश रहते हैं उस वक्त, और खास तौर से तो बेटियां इतनी खुश रहती हैं कि
0: जी
1: पूछो ही मत।
0: तो बेटियों की बात आप कह रही हैं और नवरात्रि जैसे कि माता रानी का दिन भी अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: बेटियां जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है,
0: जी
1: माँ बाप का सहयोग मिले तो बेटियां आजकल क्या नहीं कर सकती हैं। बाप तो ये हमें लगता है कि माता की शक्ति, जब माँ भी देखती होंगी अपनी बेटियों को
0: जी
1: पृथ्वी पे तो कितना खुश होती होंगी कि हमारी बच्चियां कितनी सुंदर निकल रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, इस देश को संभाल रही हैं। और उनको जो है बढ़ावा जो है पुरुषों को देना चाहिए कि कम से कम ये स्त्री अगर ना होती तो ये दुनिया समाज कहाँ होता,
0: जी जी
1: ये चीज तो होना चाहिए।
0: सृष्टि में हर एक चीज का सम्मान निर्धारित है, बस हमें उसे
1: बिल्कुल,
0: पूरा करना चाहिए।
1: वो कहते हैं ना कि जितना हम अच्छा कर्म करेंगे हमें जितनी ज्ञान की बातें मिलती हैं
0: जी
1: अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलें तो फिर जो है देश का कल्याण हो जाए। लेकिन मन में जो विकार भरे हैं वो जो है मन को बेलगाम कर देते हैं और
0: जी
1: मन कंट्रोल में रहता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया,
0: बिल्कुल। और यही
1: बस
0: मन पर जो काबू करना है वो हमें सीखना है, क्योंकि वही हमें सही राह के साथ आगे बढ़ाएगा।
1: हाँ, राधे कृष्णा है,
0: जी
1: भोलेनाथ है, माता पार्वती हैं, जितने भी हैं, बिद्नार्था गणेश हैं, जितने लोग हैं सब लोग वही बातें करते हैं।
0: पूजा पाठ है वो हम
1: हाँ
0: करें बिल्कुल, लेकिन साथ ही
1: मन से
0: साथ
1: हाँ
0: उसको अपने जीवन में भी जरूर शामिल करें।
1: बिल्कुल,
0: उन सबका सम्मान, उन सबके लिए हमें अच्छा ही
1: बस
0: सोचना चाहिए।
1: तब जाके देश हमारा सुधरेगा।
0: जी बिल्कुल। फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: बस माता रानी का आऊंगी आऊंगी अगले बरस फिर आऊंगी करके वो सुना देना।
0: तो चलिए आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये प्यारा सा भजन।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: जी नमस्ते, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम पूजा गुप्ता है।
0: जी तो पूजा क्या करती हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, और क्या बोलते हैं, ओबरा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो पूजा और परिवार में आपके कौन कौन है?
1: मेरी मेरी सास है, हस्बैंड है, मेरी एक छोटी सी बेटी है, और देवर लोग हैं जो बाहर रहते हैं, और
0: जी
1: मैं हूँ।
0: मतलब कि आप घर पे रह के सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं बखूबी।

0: हाँ मेरे हस्बैंड भी बाहर ही रहते हैं।
1: सही बात है, तो सारी जिम्मेदारी यानी कि आपके ऊपर है। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप पूरे जज्बे के साथ और पूरी खुशी के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा
0: हाँ
1: कर रही हैं। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि
0: जी
1: नवरात्रि अब शुरू हो चुका है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं?
0: हाँ, तैयारियां वही है, डांडिया खेलने जाना है,
1: क्या बात है,
0: माँ का पूजा करना है। मुझे
1: वाह, ये आपकी बातों से ही बहुत
0: डांडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, डांडिया खेलने में बहुत ज्यादा
1: ये
0: इंटरेस्ट
1: जो
0: है
1: आप
0: मुझे।
1: बता रही है ना, तो आपके बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि आपको डांडिया वाकई बहुत ज्यादा पसंद है।
0: मैंने तो 5 भी ले लिया है।
1: यानी कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने जो एंटरटेनमेंट है उसको भी कम नहीं करती, ये बहुत
0: हाँ
1: अच्छी बात है।
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं।
1: आप खुद एक बेटी हैं, तो बेटियों के बारे में क्या आपके आज संदेश रहेंगे, या समाज का या हमारा नजरिया उन बेटियों के लिए क्या होना चाहिए जो बाहर रह के सारी चुनौतियों का सामना करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं?
0: जैसे बेटियों के लिए तो मेरा यही संदेश रहेगा कि चुनौतियां आती जाती रहेंगी। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना शौक को उनको कभी नहीं मारना चाहिए। जो
1: बिल्कुल
0: उनका शौक है उसे भी पूरा जरूर करना चाहिए, और मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल। और आपने जो अपने अनुभव से जो ये बात कही कि अपनी इच्छाओं को, अपने जो सपने हैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरा करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।
0: हाँ, प्रयास तो जरूर करना चाहिए, ये नहीं कि दब के रह गए, किसी के डर में रह गए, वैसा नहीं, प्रयास करिए,
1: बिल्कुल,
0: उसके लिए प्रयास जरूरी
1: जो
0: होता
1: भी
0: है।
1: संकोच है उसे छोड़ दें और प्रयास जरूर करें। बहुत ही
0: हाँ
1: अच्छी बात कही आपने पूजा। तो आज इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम के माध्यम से क्या सुनना पसंद करेंगी?
0: एक गंगूबाई काठियावाड़ी का सॉन्ग है, झूमे रे गोरी, मुझे वही सुनना है। नहीं
1: अच्छा, गुनगुनाना चाहेंगी इस गीत को?
0: नहीं बस बजा दीजिए रेडियो पर।
1: ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।

0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी रानी राजश्री की और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से रिले भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा का कड़े इंतजाम कैले का निर्देश दिले हवे। आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक करत वहां के दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहारन के तैयारियन अ कानून व्यवस्था आ विकास कार्यन का समीक्षा कैले। मुख्यमंत्री कहले कि त्योहारन में कौनहू हालती में यातायात बाधित नाही हो के चाहे, एकरे खातिर दुर्गा पूजा समितियन से बाती कैल जाए। जबने से हर समिति यातायात सुगमता में सहयोग करे वहां के दुर्गा जी का मूर्ति के सड़क पर स्थापित न कैले गवलहों के लेके कड़े निर्देश दिहले। जिला में बनी रहल परियोजनन के प्रगति का जानकारी लेते श्री योगी कहले कि सज्जो कार्यन के समय से पूरा करावल जाए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम आ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज वाराणसी में नमोघाट पर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लेले। विकसित भारत बदे नशा मुक्त युवा थीम पर आयोजित कार्यक्रम में ढेरी संख्या में नौजवान अ खिलाड़ियन का हिस्सेदारी रहल। यह दौरान केंद्रीय मंत्री प्रतिभागियन के साथ साइकिल चला के फिटनेस अपनवले अ नशा मुक्त बनवले का संदेश दिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरा कई लेले हवे। उनकर ई जतरा जनसेवा से देश सेवा का मंत्र अ लगतरे अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रहल हो। सेवा अ सुशासन के केंद्र में रखे के सरकार 2047 ले विकसित भारत बनावे वदे लगतरे कार कई रहल हो। आज ये खास श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारन का जिक्र चयन प्रक्रिया के ढेरे पारदर्शी अ लोकतांत्रिक बनावे वदे बढ़न बदलाव कहल गए।
1: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। 23 के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
2: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है।

0: अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
1: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
2: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
1: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: शारदीय नवरात्र का आज उसे शुरुआती हो गए। नवरात्र के पहला दिन ने श्रद्धालु माई भगवती का पहला स्वरूप शैलपुत्री का आराधना कई रहले हवे। प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरन और शक्ति पीठन में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ उमड़ी रहल हो। आज श्रद्धालु अपने घरन में कलसा बैठवले के साथ ही 9 दिन के अनुष्ठान का शुरुआती कैले। प्रसिद्ध शक्ति पीठ विंध्याचल का माई विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीतर आधी रतीय से नवरात्र मेला शुरू हो गयल बा। विंध्याचल से हमारे प्रतिनिधि का एगो रिपोर्ट।
4: विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला का आज पहला दिन बा। माई के मंदिर पर श्रद्धालुओं का भारी भीड़ लगा बा। आज माई के माने वालन माई के फैल पुत्री स्वरूप का पूजा करत बाटेन। कल रात से श्रद्धालुओं लोगन का पहुँचे कर फिलफिला अभियो जारी बा। ई बखत बढ़हर मात्रा में श्रद्धालु माई का दर्शन करके त्रिकोण परिक्रमा पूरी करत है। मेला में बढ़हर मात्रा में सुरक्षा बदे जवान लगल बाटेन। माई के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न मिल पाई। मंदिर में गोड़ छुए न दिया जाये और न तो कोई वहाँ फोटो खींचे दी है। पूरा मेला के 3 सुपर जोन, 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। एफएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
3: वाराणसी के दुर्गाकुंड के सतही कईगो देवी मंदिरन, अयोध्या का बड़ी देवी काली, छोटी देवी काली, जालपा देवी, आवाटेश्वरी देवी मंदिरन और महाराजगंज का लेहरा देवी, गोरखपुर का तरकुलहा देवी, अबुड़िया माई के मंदिरों में दर्शन पूजन बदे श्रद्धालुओं का तांता लागल बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंच के गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में कलसा बैठा के नवरात्र पूजन के परंपरा का शुरुआत कैले। वहां के प्रदेशवासियों के नवरात्र का शुभकामना दिले। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
5: श्रोता, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रिजवाना खातून पुत्री मोहम्मद तौफीक निवासी ग्राम रगरम टोला बरमा खाड़ थाना कोन जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश, जो दिनांक 17/9/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, गोल चेहरा, एक हरा जिस्म, आंख कान नाक औसत। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।
6: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद

0: रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 का। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। उदय भैया राम राम हो।
1: गुलाबो तुहू के राम राम। आज देखा घंटा घड़ियाल बजता।
0: हाँ।
1: आज देख नवरात्र का शुरुआत हो गई बा।
0: बिल्कुल।
1: माई का आराधना चारों तरफ चलतिया
0: एकदम भैया। और माई की आराधना में इतना लीन हो गई बा सब कि घरे का काम काज सब समझ ले एक बार दिमाग से बिसर जात बा भैया कि बस माई की आराधना में ही लीन रहत बा। और सुबह से भैया आज तो समझ लो कि जे कलश स्थापना करे वाला व्यक्ति रहल वो कलश स्थापना कलश जे नहीं कलश स्थापना वो माई के भक्ति में गीत भजन पूजा पाठ भाव अपन कैलस। और हम लोगन भी देखा कलश स्थापना कैनी और सुबह से सांझ तक व्रत वाला समय चलत बा। घर परिवार में लड़का बचपन सब उत्साह से हो व्रत भी रहल बा कि आज व्रत बा। और हम तो समझ लगे नौ दिना का ही मुनई भैया। और बचवा लोगन भी कहत हुआ कि नहीं हम नौ दिना के मौरव लेकिन बचवा देख स्कूली जाए वाला हम अब अपने घरे में समझ लग कि हम लोगन के जिम्मेदारी कि बचपन के हम लोगन के तरीका से समझावल जाए कि का हम लोगन के सही बा का गलत बा उनके का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कहते हैं लेकिन देखा आज अगर माता का आराधना चारों तरफ होता तो माई जोन माई वो शक्ति स्वरूपा है और देखे एक शक्ति स्वरूपा जोन अपन बिटिया बाई बालिका बाई
0: बिल्कुल
1: उनकर आज अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनावल जाता है। हर साल 11 अक्टूबर के मनावल जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखे जोन अपन बिटिया लोगन बाई उनके अधिकार उनके सम्मान और उनके सामने आवे वाली जो चुनौती बा दुनिया भर में उनके सशक्तिकरण के हम लोग बढ़ावा दें।
0: बिल्कुल।
1: देखें खास तौर से अपन जोन बिटिया लोगन बाई उनके बदे बालिका शिक्षा जोन बा बहुत ही महत्वपूर्ण बा। शिक्षा से जोन अपन बिटिया लोगन बाई उनकर आत्मविश्वास बढ़ी साथे साथे वो आत्मनिर्भर और निर्णय लेवे के जो उनकर क्षमता बा वो भी विकसित उनके अंदर हुई। देखा एक माने पढ़ल लिखल लड़की जोन बा केवल अपने परिवार के नहीं बल्कि समाज

0: जौन सामाजिक और आर्थिक स्थिति बा ओके बदले कभी मद्दा रखल है।
1: बिल्कुल
0: अगर बात कल जाए शिक्षित बालिका अपने परिवार के स्वास्थ्य पोषण और बाल विकास के प्रति भी जागरूक होले।
1: बिल्कुल
0: देखें बाल विवाह जौन बा लैंगिक भेदभाव बा और वो घरेलू काम में भी लगल बाई, ई देखें हम लोगन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। काहे से कि स्कूल में जहाँ बिटिया लोगन पढ़े लिखे बदे जात है तो वहाँ शौचालय की कमी बा, दूर दराज स्कूल में रास्ता सुरक्षित नहीं, तो ओहू के चिंता हम लोगन के होले। कई परिवार में लड़कन के पढ़ाई बदे प्राथमिकता देवल जाला है, लड़कीन के शिक्षा जौन बा ऊपर माने गार्जियन लोग कही है, माता पिता कही है कि अरे लड़की के तब ब्याह शादी कह दे की बा
1: बिल्कुल
0: दूसरे के घरे जाई,
1: बिल्कुल
0: का हुई पढ़ाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और एकदम सही कहना आप कि बच्चियन के हम लोगों के तरीका से घरे में बैठा के रखे के प्रयास करल जाला कि घरे के काम का संभालिए। लेकिन अब ये जाना है कि बिटिया हमार अगर शिक्षित हुई तो दो कुल का नाम रोशन करी भैया, अपने कुल का तो नाम रोशन करबे करी, साथ में जहाँ ब्याह के जाई वहाँ भी एक जोन शिक्षित वातावरण हुई, अपने बचपन के वो उज्ज्वल भविष्य की तरफ आगे बढ़ी। अगर हम आज अपने बचिया का भविष्य उज्ज्वल करते हैं तो वो समझ ले कि आगे चल के वो अपने पूरे परिवार का भविष्य उज्ज्वल कर सकी, और उनके आप सही कलन है कि सही गलत का निर्णय लेवे में उनके बड़ी आसानी हो जाएगी। साथ में हम तो यह कहो ना भैया कि अपने बालिका के संगे संगे अपने बालक लोग के भी हम लोगों के इस शिक्षा इस संस्कार देवे के चाहिए कि अपने बच्चियन का उतने सम्मान करें जितना कि आप अपने अभिभावक का चाहे अपन गुरुजन का चाहे अपने बड़े बुजुर्ग में केहू के उस सम्मान करत हुआ। कहे कि बचिया और बचवा दोनों हम लोगों के खातिर जरूरी होना, अगर बचिया तबे सुरक्षित रही मुनी भैया जब हमार बचवा संस्कारी रही।
0: बिल्कुल सही बात,
1: और अगर आप हम लोगों के जैसे अभी बात कह लेने हैं कि राह मतलब राह नहीं सही बात, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों जागरूक हुई और अपने बचवा लोगों के कहल जाए कि बचवा बचिया सुरक्षित रहे तो हाथ जिम्मेदारी बा,
0: बिल्कुल
1: उनके स्कूली तक पहुँचावा, साथे में जा तो हूँ पढ़ा संगे लेके आवा, तो देखा हमके तो ना ही लगत बा कि बचिया कहीं असुरक्षित रही। और बचिया लोगन के हम लोगन के जागरूक करे की जरूरत बा, अगर हम लोगन कहीं भी अभिभावक लगत हव कि उनके पढ़ाई मतलब अपने बच्चियन के नहीं पढ़ावल चाहत हव, तो हम लोगन के जिम्मेदारी बा मुनई भैया कि हम लोगन उनके कह के उनके समझा के अगर हम लोगन उन कहीं कि अपने बच्चियन का शिक्षा देवल मतलब कितना जरूरी बा, तो अगर वो जागरूक हो सकलन तो ये सब जिम्मेदारी देखा हम सब एक दूसरे के मतलब देखल जाए तो एक दूसरे का ही जिम्मेदारी बा, जे जागरूक हो चुकल बा वो अगला के जागरूक करे।
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं, देखें समाज में इस सोच फैलावे की जरूरत बा,
1: बिल्कुल
0: कि बेटी पढ़ावा और भविष्य के उनके उज्जवल बनावा। और देखें आज का जो समय बा दौर बा डिजिटल शिक्षा का बा,
1: बिल्कुल
0: उनके छात्रवृत्ति मिलत है और सुरक्षित परिवहन का भी सुविधा सुनिश्चित हो गई बा,
1: बिल्कुल
0: तो अपने आस पास के लड़किन के पढ़ाई बदे आगे बढ़ावे का हम लोगों का प्रयास करे के चाहिए,
1: बिल्कुल
0: लगातार उनके प्रोत्साहित करे के चाहिए। देखें जब एक लड़का शिक्षित हुई तो आप एक व्यक्ति के शिक्षित कह सकें,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित होतिया तो अपने आप पूरे राष्ट्र के भी शिक्षित कर सकल है।
1: बिल्कुल
0: तो ए पर हम लोगन के थोड़ा सा ध्यान जरूर देवे के चाहिए। काहे से कि देखा है जो 2021 में जनगणना का माने सर्वे आंकड़ा रहल ओकरे अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर जौन रहल वो 70.3% रहल, जबकि पुरुष का साक्षरता दर जौन रहल वो 84.7% रहल।
1: अच्छा
0: ती ई अंतर एक तरह से दर्शावता देखावता कि कहीं न कहीं हम लोगन का जौन प्रयास बा वो कम बा, लेकिन देखा है अपने बिटिया लोगन के प्रेरणा भी लेवे के चाहिए लोगन से, जैसे सावित्री बाई फुले रहनी ये भारत का पहली महिला शिक्षिका रहनी जौन तमाम सामाजिक विरोध के बावजूद भी बालिकाओं बदे पहला स्कूल खोलनी। एकरे साथे साथे देखे मदर टेरेसा कल्पना चावला ई साबित कैलन कि जब एक लड़की के अगर शिक्षा का अवसर मिली
1: बिल्कुल
0: तो समाज सेवा से लेकर अंतरिक्ष तक अपन नाम रोशन करे।
1: बिल्कुल भैया, और यह भी नहीं आज के समय में अपने देश का जो पहला व्यक्ति

0: यानी कि राष्ट्रपति जी अपन महिला ही
1: द्रौपदी
0: हैं,
1: मुर्मू जी।
0: बिल्कुल महिला ही हैं, तो आप उनसे भी अपन जरूर अपन मन में ठान सके लेकिन कि जब एक महिला होकर के इतने पहले महिला पुरुष बन मतलब महिला प्रधान बन गेलिन देश का, तो हम लोगन भी काहे पीछे रही, हम
1: बिल्कुल
0: लोगन भी बढ़ चढ़ के भाग लेवल जाए।
1: बिल्कुल सही कहते हैं। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बा, ये अवसर पर हम लोगन अपने जौन अभिभावक बाएं बिटिया लोगन का, उनसे कहब
0: बिल्कुल
1: कि आज भी कई घर का जौन बिटिया बाई उनके पढ़ावे लिखावे दे केवल प्राथमिक या मिडिल तक पढ़ावल जाता,
0: बिल्कुल
1: तो बिटियन से के घरेलू काम तक सीमित मत रखा, उनके आगे पढ़ावा लिखावा।
0: बिल्कुल
1: जौन भी माने अगर बिटिया पढ़े का इच्छुक बाई तो पूरा प्रयास करा अपने आप वो आगे बढ़ाए पढ़ाए, लेकिन देखें बात बात कही अभी तो हम लोगन अपने पंच भैया लोगन से करबे करब,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज का जवान अपन कार्यक्रम बा में अपने पंच भैया लोगन बदे हम लोगन
0: बिल्कुल
1: का लेके
0: बिल्कुल
1: आयल भाई।
0: बिटिया बिटिया ही देखें अपन आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ेगी। नवयुग की प्रेरणा बेटियां ही बदलाव की दिशा, जोन तनुश्री सिंह है जोन की असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे देखा अपन अश्लू भैया के भेंट मुलाकात बा, तो हम तो कहते हैं ना कि इनकर जानकारी आवे सुनल जाए फिर आगे बात बात की करल जाए।
1: बिल्कुल सुना लिया।
2: श्रोताओं नमस्कार। हम सब जानते हैं कि बेटियां केवल परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की पहचान होती हैं। वह संस्कारों की संवाहक, शिक्षा की ध्वजवाहक और भविष्य की रचनाकार होती हैं। परंतु आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटियों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता, कहीं शिक्षा से वंचित, कहीं कम उम्र में विवाह, तो कहीं घरेलू सीमाओं में बांध दी जाती हैं। आज यानी 11 अक्टूबर को हम सब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति समाज में जागरूकता लाई जा सके। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज की बालिकाएं आत्मविश्वासी, शिक्षित हैं और अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती हैं। विद्यालयों, शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अपने जनपद के एक विशिष्ट महाविद्यालय की सम्मानित असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री तनुश्री सिंह जी, जो कई वर्षों से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। तनुश्री मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद अचल जी, मुझे खुशी है कि आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक समाज में बेटियों को समान अवसर नहीं मिलेगा तब
2: जी
3: तक प्रगति अधूरी ही रहेगी।
2: जी जी हमारे श्रोताओं को ये बताइए मैम कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का असली उद्देश्य क्या है और आज की बालिकाओं के लिए यह दिवस किस तरह से प्रेरणा देता है।
3: जी अचल जी, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में हर बालिका को शिक्षा, समान अवसर और सुरक्षा का अधिकार मिल सके। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में इसकी शुरुआत की थी ताकि दुनिया को यह याद दिलाया जा सके कि बालिका केवल संरक्षण की नहीं बल्कि प्रगति की भी पात्र है।
2: जी, बहुत सही कहा आपने। तो क्या आपको लगता है कि इस दिवस का प्रभाव अब समाज में दिखाई देने लगा है?
3: जी बिल्कुल, पहले बेटियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता ही नहीं दी जाती थी, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि बेटियां पढ़ेंगी तो घर और समाज दोनों आगे बढ़ेगा। अब तो कई ग्रामीण परिवार भी अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने लगे हैं।
2: जी, अगर हम पिछली कुछ पीढ़ियों की तुलना करें तो बालिकाओं की स्थिति में इस समय आपकी नज़र में कितना बदलाव आया है?
3: देखिए, काफी बड़ा बदलाव आया है। पहले
2: जी
3: बालिकाओं को सीमित दायरे में रखा जाता था, पर वे अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, प्रशासन हो

0: जो एक बालिका को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने के योग्य बनाती है।
1: जी
0: शिक्षा उसे केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती है, बल्कि अपने अधिकारों को पहचानने की शक्ति भी देती है।
1: जी आपके महाविद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का रुझान कैसा रहा है मैडम?
0: अब तो अधिकतर अभिभावक सहयोगी हो गए हैं।
1: जी
0: वे बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, लेकिन हाँ, आज भी कुछ परिवार हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।
1: जी
0: पर हम उन्हें भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी की तरह देखें।
1: जी, तो क्या मैम आपके दौर में जब आप पढ़ा रही थी तो ऐसी कोई छात्रा रही है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखी हो?
0: जी हाँ, एक छात्रा थी, अनन्या नाम था।
1: जी,
0: बहुत गरीब परिवार से थी, पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रोज लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल स्कूल आती जाती थी। आज वही लड़की बीएड कर ली है और एक उत्तम कोटि की शिक्षिका बन गई है। आज भी वो बालिका हमारे विद्यालय की और छात्रों के लिए प्रेरणादायी है।
1: जी, तो विद्यालय स्तर पर बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है मैडम?
0: देखिए, हम उन्हें हर गतिविधि में आगे रखते हैं।
1: जी
0: चाहे प्रार्थना संचालन करना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल कूद हो, यहाँ तक कि बाल संसद जैसी गतिविधियों में भी हम उन्हें नेतृत्व देना सिखा रहे हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा सेल्फ डिफेंस और लाइफ स्किल सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।
1: जी, देखिए सरकार के तरफ से भी बहुत तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है मैडम, तो इसमें एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कैसे देखती हैं आज के बालिकाओं पे इसका असर कैसे पड़ रहा है?
0: जी, इस योजना ने बहुत प्रभाव डाला है। अब लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी बिटिया अधिकारी बनेगी। सरकारी योजनाओं के साथ शिक्षकों की मेहनत और समाज की बदलती सोच ने बालिकाओं की इस उड़ान को और भी ऊर्जा दी है।
1: जी, अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं तो अभी कहीं कहीं बाल विवाह या भेदभाव की समस्या अभी भी बनी हुई है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो जागरूकता जरूरी है। जब तक परिवार यह समझेगा ही नहीं कि बाल विवाह बालिका के भविष्य को सीमित कर दे रहा है, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।
1: जी,
0: शिक्षा पंचायत और सामाजिक संगठनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तनुश्री मैम। क्या आप अपने विद्यालय में इन मुद्दों पर छात्रों को जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रम करती हैं या आपके विद्यालय में होता है ऐसा कुछ?
0: जी हाँ, बिल्कुल। हम समय समय पर बाल अधिकार, लिंग समानता हो गया और स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्यशालाएं करते रहते हैं।
1: अच्छा,
0: इनसे बच्चों में जागरूकता बनी रहती है और वे घर जाकर अपने परिवार जनों को भी ये बात साझा करते हैं।
1: बिल्कुल, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जागरूक हो सकें।
0: जी,
1: तो परिवार की भूमिका जो है वो बालिका के आत्मविश्वास में कितनी महत्वपूर्ण होती है मैम?
0: बहुत अहम होती है।
1: जी,
0: अगर परिवार उसे विश्वास देगा तो वही बेटी बड़े बड़े सपने देखेगी।
1: जी,
0: और उसे साकार करने के लिए पूरे साहस से जुट जाएगी।
1: जी,
0: देखिए, परिवार ही वह पहला विद्यालय होता है जहाँ पर बच्चा सीखता है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो बेटियाँ भी सीखेंगी कि मैं भी ये कर सकती हूँ।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने तनुश्री मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहली शिक्षक जो होती है किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी माँ होती है, तो संस्कार और आधुनिकता इन दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
0: देखिए, संस्कार हमारी जड़ें हैं।
1: जी,
0: और आधुनिकता की बात करें तो वो हमारे पंख हैं।
1: जी,
0: अगर दोनों में सामंजस्य हो जाए तो बालिका न केवल सफल बल्कि आदर्श नागरिक बनकर दिखाएगी।
1: जी,
0: हम विद्यालय में भी यही सिखाते हैं।
1: अच्छा,
0: शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है।
1: जी, बहुत जरूरी है, और तभी तो हम आगे भविष्य में जाकर के कुछ बन पाते हैं। और इसी को लेकर के, हालांकि शिक्षा तो एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए होता है, लेकिन करियर और

0: आत्मनिर्भरता के लिए आज की बालिकाओं के लिए कौन से क्षेत्र सबसे अधिक संभावनाओं से भरे हुए हैं?
1: देखिए, आज तो हर क्षेत्र खुला है,
0: जी
1: चाहे शिक्षा हो, विज्ञान हो, सेना, राजनीति, यहाँ तक कि तकनीकी खेल भी,
0: जी जी
1: हर जगह बेटियां आगे हैं।
0: जी
1: बस जरूरत है और सही मार्गदर्शन और थोड़े और आत्मविश्वास की।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा। और अंत में चलते चलते हम यह पूछना चाहेंगे मैम कि हमारे श्रोता और अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए?
1: जी अचल जी, आज का यह प्रश्न सबसे अच्छा रहा। विश्व के सभी अभिभावकों और मातृशक्ति को मेरा संदेश यह होगा कि अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए, उन्हें वह शिक्षा दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए और तब देखिए कि वही आपके सपनों को साकार करके दिखाएंगी। बेटियां आज के युग में किसी से कम नहीं है, वे ही देश का उज्जवल भविष्य बन के उभरे हैं।
0: जी जी बिल्कुल तनुश्री मैम, आपने बहुत सुंदर विचार रखा हमारे श्रोताओं के लिए। सचमुच सशक्त बालिका ही सशक्त भारत की पहचान है। याद रखिए, बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। तनुश्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इतने अच्छे और प्रेरक विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए।
1: धन्यवाद अचल जी, और मेरी ओर से सभी बेटियों को इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: मुने भैया,
4: हाँ।
3: देखा कितना बढ़िया जानकारी तनुश्री सिंह देलिन असिस्टेंट प्रोफेसर अलिनी और अंचल भैया भी फरिया फरिया के उनसे जानकारी लेला ना कि बेटियन के तरीका से हम लोगन के पाले पोसे के चाहिए। अब देवल जा उनके धन्यवाद, लेकिन एक
4: झूरा झूर न रहे,
3: एक माई के पचरा के साथ
4: बिल्कुल। मीना कौशल और उनकर संघाती लोगन पचरा सुनाओ थे तो सुन लेवल
3: चला।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मुने भैया,
2: हाँ गुलाबो,
1: ये जरा एकदम देखा मन एकदम वो भक्तिमय हो गई कि माई के पचरा में लीन हो गए आदमी।
2: बिल्कुल एकदम सही बात कहते हैं। तो देखाए अपन जो पंच भैया लोग हवा उनसे तो हम यह निहोरा करब कि भैया देखो पचरा तो भैबे कर, लेकिन जीवन बदे
1: हाँ।
2: जौन सबसे उपयुक्त चीज बा, जौने पर आधारित अपन जीवन बा, काहे से कि रहीम दास जी कहलें ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानोस चून। तो पानी बड़ा महत्वपूर्ण बा हम लोगन के जीवन बदे।
1: बिल्कुल,
2: जौन हवा पानी बयार बा एके बड़ा सुरक्षित हम लोगन के रखे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: काहे से कि अगर हम लोगन जल एकत्रित कई कर रखब और सदुपयोग करब तो निश्चित बा के आगे काम दे। देखे
1: यही बात बाती के संगे बुने भैया हम तक।

0: है ना कि अपन ये सारा करत बस हुई कि अपन पंचायती यहीं से बैठल जाए, और फिर भेंट हुई, मुलाकात हुई, बढ़िया बढ़िया बात हुई, तब तक खातिर अपन पंचायती से बैठल जाए।
1: चले के तो
0: कंचन
1: सब पंचन के
0: के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: बचवा बोला जय हिंद।
1: गुलाबो,
0: हाँ भैया,
1: देखा है आज अपने बचवा लोगन के कार्यक्रम बाल गोपाल में हम लोगन जुट गल है। अब बचवा लोगन में मेला ठेला का बड़ा उत्साह होला,
0: बिल्कुल
1: यही से अपन बचवा लोगन भी बहुत उत्साहित दिखात हुआ।
0: एकदम भैया, और ए समय उत्साहित न दिखाई है तो कब दिखाई है। यही समय तो अपन बड़का मेला हो, दशहरा वाला मेला बचवन के देखे के मिलत बा। अब
1: बिल्कुल
0: बचवा लोगन अभिये से सोचा उत्साहित हवा, और उनके चेहरा के देख के ही मुने भैया लगत बा कि उनके लगत कि मेला में बड़ी सामान मिले वाला बा। घरे में लगत है कि भैया दीदी और सब जुटल हवा, और सही में देखा छोटवार बचवन जो घर में होलन ना, तो सबकर ध्यान देखा छोटवार बचवन पे होलन
1: बिल्कुल
0: कि उनके ढेर सामान चाहेला, उनके खिलौना चाहेला। बड़ बचवन जब होलन भैया तो समझदार हो जालन, लेकिन छोटवार बचवन के नाही केहू समझा पावत। उनके खिलौना चाहिए, कुछ न कुछ रंग बिरंगा चीज चाहिए, पीरी चाहिए, मतलब उनके बहुत सामान चाहला।
1: बिल्कुल
0: तो बचवा लोगन के उत्साह के साथ देखा आज अपने कार्यक्रम में जुट भी गल हवा।
1: बिल्कुल बचवा लोगन जुटल हवा। और देखें हर एक जगह गांव में रामलीला वगैरह भी होता,
0: हाँ
1: और राती में बचवा लोगन जिद कई का अपने माता पिता के साथ रामलीला देखे भी जात हवा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर बचवा लोगन अपन रामलीला वगैरह देखे जाता तो अपने बचवा लोगन से एक बात हम कहब कि बचवा लोगन देखा हम लोगन जौन है, यानी मनुष्य एक तरह से सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहला और एक दूसरे का सहयोग कई कई अपन जीवन व्यतीत कराला।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम लोगन के समाज में अनेक ऐसा लोग रहना जौन की जीवन का जौन मूलभूत आवश्यकता बा के पूरा करे में वो संघर्ष कराना। काहे से कि केहू के पास खाए के भोजन नहीं बा, तो केहू के पास पहने बदे कपड़ा नहीं, कुछ बचवा लोगन आर्थिक कठिनाई के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि कुछ बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक सहारा का तलाश करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसे में लोगन का मदद कयल अपने बचवा लोगन का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। काहे से कि जरूरतमंद जे भी बा
0: बिल्कुल
1: ओकर मदद कयल मानवता का सबसे बड़ पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: काहे से कि कौनो अगर आदमी भूखल बा, भूख लगल बा ओके, तो ओके भोजन देवल, कौनो गरीब बचवा लोगन के पढ़ाई बदे किताब उपलब्ध करावल, कौनो भी बीमार जोन बचवा लोगन बाया या कौनो भी व्यक्ति बा तो ओकरे उपचार बदे सहायता कयल, और असहाय जोन बुजुर्ग बाया उनकर सहारा बनल, ई सब एक बढ़िया काम है।
0: बिल्कुल भैया, और देखा हम तो कहब कि जब आप रामलीला के बात करत रहलन तो देखा है बड़ बुजुर्ग जो दादी बाबा घरे में होलन ना, तो अपने बचवा लोगन के काहे ले जालन। पहले समय में अपने बचवा लोगन के दादी बाबा लोग कहानी सुनावत रहलन कि कहानी में के प्रकार से केहू के सहायता हम लोगन के करके केहू के कितना फायदा होला, केहू के कितना एक तरफ से भगवान उनका सहायता करलन अगर केहू एक दूसरे का सहायता करला। तो आज के समय में रामलीला के माध्यम से अगर जैसे अपने बच्चों लोगों के हम लोगों ले जाते हैं, तो वहां भी देखे हैं रामलीला के माध्यम से उनके संस्कार सिखावल जाये के प्रकार से भगवान रामचंद्र जी अपने भाई के, अपने पूरे परिवार के, अपने

0: पालन पोषण उनके खातिर परित्याग कैलन, उनकर कितना मतलब आगे जो उनकर दिनचर्या के प्रकार से उनकर जीवन बीतल, तो अपने बचवा लोगन के सुन के वो समझ ल कि एक कहानी एक कथा के माध्यम से उनके अपने जीवन में उतारे के प्रयास करलन।
1: बिल्कुल
0: और बचवन के ये भर नहीं, अब कथा कहानी जैसे अब होत बा हम लोगन बचवा लोगन के बैठा के सुनावत हई, तो उनके इहो प्रेरित हम लोगन करल जाए कि कथा कहानी सुने भर तक नहीं होला, उनके अपने जीवन में उतारल जाए। और अगर हम एक दूसरे का सहायता करत हैं तो सीधे साक्षात भगवान हम लोगों का सहायता करत
1: बिल्कुल
0: करिए। कहें कि घरे में एक समझ लगे हम अपने बचवा का कहानी आपके बतावत ही मुनि भैया कि हम एक चूहा पकड़नी, चूहा बहुत नुकसान करत रहल, चूहा के पकड़ के हम सोचने कि ओके मतलब बाहर ले जाके फेंक दे अब चाहे चूहेदानी में रख के, लेकिन हमार बचवा कहलस कि अगर ओके मतलब बंद हम करके रख ले हैं तो ओके अगर नुकसान हो तो समझ लग कहीं ना कहीं हमार मतलब अपने बचवा अपने आप के कहलस कि हमके भी हो सकल है कबो न कबो ऐसे क्यों पकड़ के बंद कर दे कैद कर दे, तो कितना अगर ओकर तो जब जैसे तुहके तो तकलीफ हुई वही प्रकार से चूहा के जो महतारी है उनके तकलीफ, तो एक कहीं ना कहीं एक संस्कार रहल भैया कि वो बचवा के मन में ही बात आई। यही
1: बिल्कुल
0: प्रकार से अगर हम अपने बच्चों के संस्कार बढ़िया देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा वो उनके आगे जीवन में जरूर आई।
1: बिल्कुल सही बात कहत हैं। जीवन में बचवा लोगन के हर समय केहू न केहू को सहयोग जरूर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: काहे से कि अगर मदद करब हम लोग तो इमें बहुत अधिक धन का आवश्यकता नहीं हो। कभी कभी जवन अपन छोट छोट प्रयास बा केहू के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकला।
0: बिल्कुल
1: आ देखें हम लोगन के अपने आसपास रहे वाले जरूरतमंद जवन भी भाई लोग बाया उनके समस्या के समझे का प्रयास करे के चाहिए। आ जवन देखें अपन मने पुरान कपड़ा बा पुस्तक बा खिलौना बा या अन्य उपयोगी वस्तु बाई जवन जरूरतमंद लोगन के हम लोगन दे सकीला। सर्दी में गरीब जे बा ओके कंबल देवल जाए, गर्मी में प्यास जिके लगल बा तो के पानी पियावल जाए। आ जवन भी गरीब बचवा लोगन बाया शिक्षा में उनके सहयोग में मदद कर जाए, ये सब बढ़िया तरीका है। करे
0: बिल्कुल
1: अतिरिक्त कोनो भी जरूरतमंद के अगर सरकारी सहायता योजना का जानकारी देवल भी उनकर सहायता हम लोगन कर सकीला ये माध्यम से भी। काहे से कि रहीमदास जी लिखलन ना कि दीन सबन को लखत है दीनै लखै न कोई, अजो रहीम दीनै लखै दीन बंधु सम होई।
0: बिल्कुल
1: यानी जौन गरीब व्यक्ति बा वो एक आश्रय लेकर जितना भी जैसे रास्ते से वो गुजरी हैं लोग तो देखा ला, लेकिन वो गरीब व्यक्ति के तरफ केहू नहीं देखा, वो अपने रास्ते से निकल जाला
0: बिल्कुल
1: चल जाला
0: बिल्कुल
1: कि हम गरीब के तरफ काहे देखी। लेकिन रहीमदास जी कहलन कि जे वो गरीब आदमी के तरफ देखा ला वो कोनो साधारण व्यक्ति नहीं, वो दीन बंधु के समान बा, वो भगवान के समान बा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जे ओकर सहयोग करता। तो हर समय देखिए देखें हम लोगन के भी बचवा लोगन के शिक्षा देवे के चाहिए कि वो एक दूसरे का सहयोग करें मदद करें। आ
0: बिल्कुल
1: इतने नहीं जवन उनके साथे उनकर सहपाठी लोग बाया पढ़त लिखत माया उनसे एक अच्छा व्यवहार करें और
0: बिल्कुल
1: उनकर पढ़ाई में भी मदद करें।
0: बिल्कुल
1: आ जवन जरूरतमंद बचवा लोगन बाया उनकर समाज में सहायता करे का प्रयास करें और लोगन के उत्साहित करें, बताएं, प्रेरित करें कि
0: बिल्कुल
1: वो लोग भी वो बचवा लोगन से जुड़े, उनकर सहयोग करें। देखें अभी बात बात कही तो अपने बचवा लोगन से हम लोगन अपने कार्यक्रम में करबे करब,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हुई काका तनी बचवा लोगन के बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखा एक छात्रा ही हम लोगों के कार्यक्रम में देखा आज उपस्थित भेल। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण ए विषय पे जो अपन देखत का जानकारी देते हैं, हम तो कहते नहीं भोला भैया उनसे जानकारी लेते हैं, बिना देर के लिए आवे इनका जानकारी सुनल जाए।
1: सुनल जाए तो

श्रोताओं, अनुशासन संबंधित एक कहावत है, समय नियम संयम सदा अनुशासन के अंग, इनको जो अपनाएगा चमकेगा ज्यों भंग। अर्थात समय की पाबंदी, नियमों का पालन और संयम, ये तीनों अनुशासन के मुख्य भाग हैं। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हीरे की तरह चमक

0: सकता है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के कठौंधी में स्वाति भारद्वाज जी से मुलाकात हो रही है। आप छात्रा हैं, अनुशासन कितना व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। तो स्वाति भारद्वाज जी, आपका आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद।
0: और ये अनुशासन के बारे में जानना चाहते हैं कि अनुशासन के आखिर अर्थ क्या है।
1: जी, सर्वप्रथम अर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है कि स्कूल के नियम, कतार और शक्ति का भाव आता है। परंतु क्या वास्तव में अनुशासन इतना ही है? नहीं। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे चलना, वहीं शासन का अर्थ होता है नियम, यानी कि नियमों का पालन करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अनुशासनम ही परमो धर्मः, अनुशासन ही परम तपः। अर्थात अनुशासन ही सबसे बड़ा धर्म है और अनुशासन बड़ी तपस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुशासन के महत्व की अगर बात की जाए
1: जी,
0: तो क्या इसका महत्व है अनुशासन का?
1: जी, अनुशासन के महत्व के बारे में यदि बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के सभी प्राणियों के साथ समानता बनाए रखे। इसके लिए अनुशासन का होना अत्यंत अनिवार्य है। अनुशासन के बिना किसी भी समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। ऐसे में समाज के सभी मनुष्यों को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासन के बिना आनंददायक तथा सुखी जीवन की कल्पना करना कठिन है। अनुशासन प्रत्येक संस्था की आवश्यकता होती है, चाहे वो फिर परिवार ही क्यों ना हो।
0: बिल्कुल।
1: यदि परिवार के कोई भी सदस्य यदि अनुशासित ना हो तो परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो वहाँ के कर्मचारी यदि अनुशासित ना हो तो वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह स्पष्ट है कि अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और ना कोई संस्थान, ना कोई राष्ट्र। अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता होती है। अनुशासन केवल व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जिससे अनुशासित अगर व्यक्ति नहीं है तो न समय से वो सोएगा, न समय से जागेगा, न समय से खाएगा
1: जी।
0: बहुत इसीलिए विद्यार्थी पछड़ जाते हैं कि आज नहीं कल हम फार्म भरेंगे, कल वहाँ जाएंगे या थोड़े देर बाद तब जगेंगे। तो ऐसे में उनका पाठ्यक्रम भी समय से नहीं पूर्ण हो पाती है और नहीं जो है कि कोई व्यक्ति, अब जैसे मान ली खेती की बात की जाए तो उसमें जो आज बुआई का बतर दिया है, एक दिन कहेंगे कि अब कल बोल लेंगे, तो पता चला कि अगले दिन से उसका समय साथ नहीं दिया, बारिश होने लगेगी या सूखा पड़ जाएगा। तो इस प्रकार अनुशासित व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है
1: जी।
0: और यदि अनुशासन की आवश्यकता की बात करें
1: जी,
0: तो क्या आप की दृष्टि में है कि अनुशासन की क्या आवश्यकताएं हैं?
1: देखिए, अनुशासन की आवश्यकता की यदि बात करें तो अनुशासन न तो स्थिति के चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है और इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट ही नजर आने लगते हैं। अतः अनुशासन का होना अनिवार्य है। जैसे कि प्रारंभ में बताया गया है कि अनुशासन यानी कि शासन के पीछे चलना, इस अर्थ से देखा जाए तो शासन जैसा शासन होगा वैसे लोगों द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है तो कहीं ना कहीं इसमें शासन का अभाव भी जिम्मेदार है। जी, यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं होगा तो परिवार की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है तो वहाँ के अपराधों का जो ग्राफ होगा वो ऊपर ही रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से उनके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार जो हमारे क्रिकेट के मैदान में कैप्टन होते हैं, यदि वो अनुशासित ना हो तो उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार हमारे सैनिकों की बात की जाए, उसमें यदि कैप्टन अनुशासित ना हो तो जो सैन्य टुकड़ी होगी वो भी अनुशासित नहीं रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश को खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अगर मुखिया अनुशासित नहीं है,

0: कैप्टन अनुशासित नहीं है,
1: जी
0: लेकिन चलो ठीक है ऐसा हो गया तो रहने दो। पता चला कि यही गलती बार बार व्यक्ति करता रहेगा, अंतोगत्वा जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचेगी।
1: जी
0: तो यदि हम लोग बात करें अनुशासन के विकास के बारे में, तो अनुशासन के विकास कैसे कर सकते हैं हम लोग?
1: देखिए, अनुशासन मनुष्य की आंतरिक चेतना का परिणाम होता है। इस प्रवृत्ति का विकास करना उसके ही अधिकार क्षेत्र में है। यह स्मरणीय रहे कि स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि
0: जी
1: यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करेगा। कोई भी बच्चा होगा तो वैसा ही सीखेगा जैसा परिवार के लोग करते हैं।
0: बिल्कुल
1: परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो संभवतः उस बच्चे का भी आचरण खराब हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: अगर शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे का भी आचरण गलत हो सकता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हों
0: जी
1: तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल में ही बच्चे को अच्छा नियम सिखाने का प्रयास करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसके बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता बहुत उनको प्यार से रखते हैं और उन पर किसी प्रकार का नियम कानून या नियंत्रण नहीं रखते, वो आगे चलकर बच्चे सफलता को नहीं प्राप्त कर
0: बिल्कुल
1: पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: जिसे उसको दुलाना चुलाना कि चलो हमारा बच्चा है
1: जी
0: गलत भी कर दिया तो कोई बात नहीं, तो
1: जी
0: ऐसे
1: जी
0: में वो सफलता नहीं हासिल करते।
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें विकसित कर लेती हैं। नित्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इसका
0: बिल्कुल
1: परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन जब वो ये समझ पाते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। जी
0: निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन हम लोग समय से बंधे हुए हैं,
1: जी
0: तो निष्कर्षतः क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो है कि अनुशासन के बारे में श्रोता लोग सुन रहे हैं,
1: जी
0: तो अंतिम चलते चलाते कुछ और निर्देश दे दें। बिल्कुल
1: जी अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में उसके अनुशासित जीवन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन अनुशासन के कारण ही सफल रहा तथा
0: बिल्कुल
1: हमारे लिए प्रेरणादायी रहा। इस तरह ही राष्ट्र की प्रगति भी उसके अनुशासित नागरिकों पर निर्भर करती है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी हम लोगों को अनुशासित रहना सिखा सकते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक अनुशासित होते हैं वही देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल तो निश्चित रूप से अनुशासन संबंधित तुलसीदास जी का भी एक कहना है कि अनुशासन बिन ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मान, तुलसी नर अनुशासित रहे तभी बने महान, बिन अनुशासन सच्चा ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के सम्मान नहीं, इसलिए मनुष्य को हमेशा अनुशासित रहना चाहिए तभी वह महान बनता है। इतना अच्छा जानकारी दे रही थी स्वाति भारद्वाज, कठौंधी दुद्धि सोनभद्र से हैं, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हम लोगों के भी तरफ से कि कितना बढ़िया जानकारी अपन स्वाति भारद्वाज जी देले ना, और उनकर अनुभव कितना बढ़िया रहल विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर।
0: बिल्कुल
1: अब देवल जी उनके धन्यवाद, लेकिन उन्हीं एक बचपन के ही मुख से एक झंडा गीत के साथ
0: बिल्कुल समझो
1: चले।
2: मेरा नाम है गीतांजलि कुमारी, मैं आप लोग के सामने एक झंडा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

भेसा वाल सिंहे जरका दिनों के भेसा वाल सिंहे जरका चक्र जोश भरे तन मनवा में चक्र जोश भरे तन मनवा में तैसे सुघर मजा।

0: देखें बचवा लोगन कितना बढ़िया गीत गौन ही सुनावत हवा ऐसे सुघर नजारा का हुई जहनवा में।
1: बिल्कुल
0: देखें जौन बचवा लोगन हवा एक बात उनसे हम और कहब कि जवान उनके घरे में बूढ़ बुजुर्ग लोग हवा उनकर सम्मान जरूर कराएं, उनके आज्ञा का पालन कराएं, उनकर बात माने। काहे से कि जौन बूढ़ बुजुर्ग बा अगर उनकर वो आशीर्वाद करी है प्राप्त करी है तो निश्चित बा के अपने जीवन में हर समय अपन बचवा लोगन आगे बढ़िए। बचवा लोगन के आगे बढ़े के भी चाहिए।
1: हाँ।
0: जौन भी बूढ़ बुजुर्ग बा उनकर आशीर्वाद लेवे के चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: देखें अब अगले रविवार के फिर अपने बचवा लोगन से मुलाकात हुई, नई नई बात हुई।
1: बिल्कुल।
0: अब देखें समय हो गल चले का, अब चलल जाए तो बचवा बोला जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और उनके साथियों की आवाज में मर्द फिल्म से ये गीत लिखा था इंदीवर ने, संगीत अनुमलिक का था।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: और आइए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में अशांति फिल्म से ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं, संगीत राहुल देवबर्मन का।

श्रोता, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: श्री योगी ने कहा कि त्योहार में किसी भी दशा में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित न हो, इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से बात की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिमा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर जिले में शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान जारी है। नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है।
1: वह समाज जो नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता। और इसीलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है। उसका थीम ही है कि महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। ये तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, उसकी राशि घर की मालकिन के नाम पर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आज की इस विशेष श्रृंखला के क्रम में हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माँ

0: और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की मौजूदगी में आज वाराणसी के नमो घाट पर 94वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजित किया गया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। नमो घाट से शुरू हुई साइकिल यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में 2026 आईजी नागोया एशियाई खेलों के पदक विजेता प्राची चौधरी, पारुल चौधरी, जय कुमार और राजकुमार पाल भी शामिल हुए। शारदीय नवरात्र का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है और देश विदेश से श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। विंध्याचल से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
3: विंध्याचल में लगे शारदीय नवरात्र मेले में आज प्रथम दिन से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल रात से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2500 से भी अधिक पुलिस के जवान तैनात हैं। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्पर्श व फोटोग्राफी पर भी रोक लगाया गया है। मेला क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 1000 सफाई कर्मी तैनात है। मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
2: बलरामपुर जिले के देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ प्रातः काल पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। मां के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं के आवास एवं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र का सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिर में पूजन अर्चन किया, बाद में बालिका सम्मान कार्यक्रम में स्टडी टेबल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, देवी पाटन शक्तिपीठ, बलरामपुर।
2: वहीं वाराणसी सहित अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मां तरकुल्हा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। नवरात्र के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी श्रेणी में 3548 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें मुख्य वाणिज्यिक, सह टिकट पर्यवेक्षक, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टंकण और वरिष्ठ क्लर्क के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आवेदन 6 नवंबर तक किए जा सकेंगे। रणजी ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश टीम ने बिहार के खिलाफ राजगीर में हो रहे मुकाबले में पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए हैं, जिसमें माधव कौशिक और रिंकू सिंह के शानदार नाबाद शतक शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दशहरा पर्व की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की प्रगति का है आधार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने

0: वाराणसी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में लिया हिस्सा। फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आपकी चाय EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है। ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जबरदस्त। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं ये देवी गीत।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना प्रफुल्ल दवे, सपना अवस्थी, सुदेश भोसले की आवाज में क्रांतिवीर फिल्म से ये गीत। गीत लिखा था समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का था।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: और आइए अब सुनते हैं दिलीप सेन, समीर सेन के बनाए हुए धुन पर महेंद्र देहलवी के लिखे इस गीत को। इसके लिए अपनी आवाज दी है सुखविंदर सिंह और साथियों ने, फिल्म है मेहरबान।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, अपनी रेडियो हम सफर रुखसार नाच के साथ। और आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज में अंबा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई हुई धुन पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म स्वर्ग से सुंदर।

समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये भक्ति गीत।

शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के लिए इस गीत को। फिल्म है 20 साल बाद और इस गीत के लिए धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: अभी सुन रहे थे आप फिल्म आशा का ये गीत। मोहम्मद रफी, नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में ये रचना।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया।

0: नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशन चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का

0: सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए

0: प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN rights body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में लोफर फिल्म से ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और एक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया ये गीत सुहाग फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज में जांबाज फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और आइए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में दुकान फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है अरुण भैरो ने, संगीत अल्ताफ राजा का।

अभी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को। इस गीत के लिए अपनी आवाज़ दी थी सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने, फिल्म थी घातक। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की पुरकशिश आवाज़ में, हीना फिल्म से ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में लेकिन फिल्म से ये गीत। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

का स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंतप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में MA की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने

0: कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन तीन ताल में। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमाट।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश होगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा होगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, जडेश इनकल्केटेड अ सेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एट द टेंडर एज ऑफ 8 he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Satlingappa Desai Kallur, a top grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals, incorporating various styles of performances. Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hogar will begin his performance of tabla solo in Teen Taal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vastradmat.

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश होगर जी से तबला वादन में रूपक ताल हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाई पंडित जडेश होगर इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगर तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रदमठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रदमठ। This program was recorded at the studios of Akashavani, Kalaburgi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से

0: एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

बजकर 5 मिनट हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।